आशा भोसले और अमित कुमार की युगल स्वर में पेश है लव स्टोरी फिल्म का गीत। शब्द संयोजन आनंद बख्शी का, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

सुनहरे गीत फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ, जिसमें अभी आप सुन रहे थे कुछ पुराने फिल्मी गीत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 9:30 होने को है। उर्दू कार्यक्रम आईना कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: होते, चीजें खरीदी जाती, आसपास के लोगों से भी बातचीत होती। लड़कियां दसवां पास कर चुकी थीं और अब घर में माँ के साथ सिलाई करती थीं, फैशन करती और माँ के साथ ही बाहर जाती, जिनका इरादा उन्हें जल्द ही रुख्सत करने का था। लड़का अलबत्ता बहुत कम नजर आता था, घर में उसका होना ना होना बराबर था। बहरहाल कुल मिलाकर वक्त ठीक ठाक गुजर रहा था। फिर इम्तहानात का जमाना आया और गर्मी अपने शबाब पर पहुंच गई। नाजिया के तमाम पेपर निपट चुके थे और वो आखिरी पेपर था। वो कूलर के सामने बैठी किताब में गर्क थी। रात के 11 बज चुके थे तभी लाइट गायब हो गई। नाजिया ने कुछ देर इंतजार किया, फिर मोमबत्ती रोशन कर ली, मगर गर्मी और घुटन से परेशान होकर उठ बैठी। मौके को देखकर मच्छर भी चले आए। आधा घंटा गुजर गया लेकिन लाइट ना आई। न वो पढ़ सकती थी न आराम कर सकती थी। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। अम्मी मैं छत पर जाकर पढ़ लूं, उसने कहा। लेकिन बेटा वो लोग तो शादी में गए हैं, दरवाजा बंद होगा। देखती हूँ, कहकर नाजिया सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ऊपर पहुंचकर देखा दरवाजा सिर्फ भिड़ा हुआ था। वो खुश हो गई और छत पर चली आई। हवा तो कुछ खास नहीं थी मगर हाँ घुटन नहीं थी। और फिर सड़क की दूसरी तरफ लगे लैंप पोस्ट से रोशनी आ रही थी जो उसके लिए काफी थी। उसने टहल टहल कर याद करना शुरू कर दिया। अंदर कमरे में किरायेदार लड़का सो रहा था। उसकी दिन की ड्यूटी थी। रात को उसने शादी में जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो सोना ज्यादा बेहतर समझता था। गहरी नींद काफी देर बाद टूटी क्योंकि कूलर बंद हो चुका था, लेकिन वो गुनूदगी के आलम में बिस्तर पर ही लेटा रहा आंखें बंद किए हुए। फिर उसने दीवार की जानिब करवट ली तो धुंधली आंखों को दीवार पर कोई परछाई नजर आई। उसने आंखें मसल कर देखा, परछाई इधर से आती उधर चली जाती। क्या कोई है, उसने सोचा। यकीनन कोई है। उसने पलटकर छत की जानिब देखा, अंधेरे में कोई चल रहा था। कौन होगा, सब लोग तो शादी में गए हुए हैं। अचानक उसे ख्याल आया कोई चोर तो नहीं है, और ये सोचकर वो सिर्फ हाफ पैंट पहने हुए छत की तरफ लपका और सख्त आवाज में बोला, कौन है? नाजिया ने सुना और किसी को अपनी जानिब आते देखा तो लरस कर रह गई। बेख्तियार कदम जीनों की जानिब उठ गए। पहले जीने पर कदम रखते ही लाइट आ गई, साथ ही कुछ आवाजें सीढ़ियों से ऊपर की जानिब आती हुई महसूस हुई। नाजिया ने पलट कर ऊपर देखा, नीम बिरहना लड़का पहली सीढ़ी पर खड़ा, और वो आगे बढ़ी। जीने का मोड़ आ गया था तभी सामने देखा किरायेदार खातून मैं अपने दोनों बेटियों के सामने खड़ी हैं। उसे देखकर और फिर अपने बेटे को देखकर उनके चेहरे का रंग अजीब हो गया। एक तीखी आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मम्मी, कहकर लड़का तेजी से वापस मुड़ गया और नाजिया सीढ़ियां उतर गई। ऊपर से बहुत देर तक चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहीं और नाजिया जारो कतार रोती रही।
1: सामईन, अभी आपने अफसाना यूं बनते हैं अफसाने समाअत फरमाया, जिसे सुल्ताना खानम हिजाब ने तहरीर किया है। इसी के साथ हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम आईना अपने इख्तिताम को पहुंचता है। रुखसत होने से पहले हमारा पता नोट फरमा लीजिए। हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम आईना, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 4620002। इसी के साथ रुजदा को इजाजत दीजिए। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम आईना। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।
1: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने।

0: सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पराशर, वाचन स्वर दीपा सिंह। शाजापुर जिले में किसान खरीफ फसल की बुआई की तैयारियों में लग गए हैं। जिले में हर साल करीब 3 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोई जाती है। किसान अब अच्छे मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। पर्याप्त बारिश होने पर अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी तरफ शुजालपुर और काला पीपल विकासखंड के किसानों के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती के सिद्धांत, कम लागत में अधिक उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण की तकनीक की जानकारी दी। खेत बचाओ अभियान के तहत मृदा और जल संरक्षण के महत्व पर भी चर्चा हुई। खेती की तैयारियों के बीच जिले के स्कूल भी बच्चों की चहल पहल से गुलजार हो गए हैं। स्कूल चले अभियान के तहत नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है। नए बस्ते, किताबें और कक्षाओं को लेकर बच्चों में उत्साह दिखाई दे रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के संदेश के साथ जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया। शाजापुर में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। इस दौरान स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। इसी क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 41 प्रतिभा बालिकाओं का सम्मान किया गया। उन्हें कुल 2,05,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। कलेक्टर ने बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स भी दिए। समाज में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के बीच काला पीपल के बेरावल गांव में बावड़ी उत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन का संदेश दिया गया। ग्रामीणों ने जल स्रोतों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाते हुए प्रशासन ने बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ सख्ती दिखाई है। होटल ढाबों और औद्योगिक इकाइयों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। विकास के मोर्चे पर भी जिले के लिए अच्छी खबर है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होने से शाजापुर के 546 गाँव को फायदा मिलेगा। इससे निवेश, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होने की उम्मीद है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई।

0: निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण न होने पर कलेक्टर ने नगरपालिका इंजीनियर पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने सीएमएचओ डॉ. कमला आर्य को समिति बनाकर जांच करने और दोषी इंजीनियर से राशि वसूलने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ जिले में मुस्लिम समाज के मोहर्रम पर्व की शुरुआत हो गई है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सौहार्द और शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की। युवाओं और समाज को नशे से दूर रखने के लिए जिले में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मास्टर वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया गया है। श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग ने बिना लाइसेंस काम करने वाले ठेकेदारों पर निगरानी बढ़ा दी है। सभी ठेकेदारों के लिए पंजीयन और लाइसेंस अनिवार्य बताया गया है। महिला और बाल विकास विभाग ने कुपोषण मुक्ति अभियान की समीक्षा की है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जा रहे पोषण आहार की गुणवत्ता की जाँच की गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मत्स्य विभाग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मत्स्य प्रजनन काल को देखते हुए जिले में 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिंहस्थ के समय उज्जैन और शाजापुर जिले में होने वाले धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए पुलिस ने एक नई पहल की है। अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के निर्देशन में यातायात पुलिस ने यातायात मित्र फोर्स गठित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत 18 साल से अधिक उम्र के जागरूक छात्र छात्राओं और युवाओं का पंजीयन किया जाएगा, जो यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा जागरूकता में पुलिस का सहयोग करेंगे। जन कल्याण शिविरों में भी लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। विभिन्न विभागों ने नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी दिया। जिले की सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने के लिए प्राचीन पांडुलिपियों का समीक्षा और डिजिटलीकरण किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया। करीब 300 लोगों ने इसमें भाग लिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे शाजापुर जिले की चिट्ठी। आलेख अजीत पर।

0: आशर का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
1: मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1179 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सोनू निगम का गाया ये गीत।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

0: तीनों कॉलेज में
1: डोंट वरी
2: फीस तो देखो
3: क्या हाल है क्या हुआ
1: फीस की टेंशन
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही
4: रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का नो कोलैटरल
3: वो कहाँ है
4: मिठाई
5: RBI कहता है
6: करो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
7: अगला गीत हमने चुना है आबिदा परवीन की आवाज में।

सुगम संगीत में आज के लिए बस इतना ही। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। दिन के 11 बजने को है आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों का प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं छाया पाठक। नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल है मैडम
0: जी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल, कौन बोल रहे हैं?
1: कालीचरण यादव।
0: कालीचरण यादव, फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। पसंद बताएं अपनी
1: फिल्म का नाम है खुली फिल्म का गाना सुनना। मुझे पीने का शौक नहीं, गाना बजाने
0: मुझे
1: पीने का शौक नहीं। खुली फिल्म अमिताभ बच्चन की पिक्चर है ना?
0: जी जी,
1: वही गाना सुनना, गाना बहुत पसंद है
0: जी। नमस्कार,
1: आप कौन बोल रहे हैं?
0: छाया पाठक बोल रही हूँ।

0: हेलो हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, फोन करेंगी, सुनिए, मैं आपका स्वागत है। नाम
1: हेलो
0: बताएं अपना।
1: जी,
0: नमस्कार।
1: जी मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। बहन जी,
0: सैनी जी, स्वागत है, बताएं क्या करते हैं आप।
1: जी मैं सिलाई करता हूँ और इस समय सिलाई कर रहा था, मशीन चला रहा था और नंबर भी उजाल करता जा रहा था और यहाँ पे कॉल चालू हुई, मैं ध्यान नहीं दे पाया, देखा अरे कॉल चालू है।
0: अच्छा जी, चलिए बताएं आज क्या सुनना चाहेंगे।
1: जी आज आप सुनवा देना, सावन आया बादल छाए, बुलबुल जय की फूल खिले। ये
0: अच्छा,
1: गीत है शायद साजन का घर,
0: साजन का घर
1: उस फिल्म का गीत।
0: जी, बिल्कुल सुनवाएंगे, लेकिन सावन तो अभी आया नहीं है।
1: बस इंतजार है, इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है इस समय।
0: जी, चलिए कार्यक्रम में
1: और
0: फोन
1: एक
0: करने के
1: मेरी
0: लिए।
1: रिक्वेस्ट है कार्यक्रम के बारे में, जो फोन का नाम बात आपकी, जीत हमारे कार्यक्रम चलता है, अगर उसमें लास्ट में जब जैसे कार्यक्रम समापन होता है और अगला दशा बता दिया जाए तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा सर, बनेगा
0: सर
1: कार्यक्रम।
0: होता है क्या है, कार्यक्रम
1: जी
0: प्रस्तुत करने वाले अलग अलग होते हैं, तो अब किसी को विषय पहले से पता नहीं रहता कि सामने वाला क्या लेने वाला है विषय अगला, इसलिए नहीं बता पाते, और सभी लोग तब भी नहीं सुनते हैं, नए श्रोता भी जुड़ते हैं या उस समय नहीं लगाते हैं फोन, तो किसी को पता नहीं पड़ पाता, तो इसलिए उसी समय बताना रहता है। ठीक है,
1: ठीक,
0: चलिए, नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
1: खूबसूरत सी जिंदगी में खुशियां

0: आपके चेहरे पर बरकरार रहे और मेरी दुआ है रब से कि आपको खुशियों का नहीं बल्कि खुशियों को आपका
1: इंतजार रहे। बहुत बढ़िया, आप नाम भी बता दें अपना।
0: हम आपके नियमित श्रोता बोल रहे हैं पालदा नाका इंदौर से, मोहम्मद रफी मंसूरी।
1: मोहम्मद
0: रफी मंसूरी पालदा नाका इंदौर से
1: जी।
0: कैसे मैडम आप?
1: बस बढ़िया है, आप बताएं आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं मैडम।
1: अच्छा, तो आपका नाम जो है, तो आप मोहम्मद रफी के गाने पसंद करते हैं कि नहीं?
0: हाँ गाने पसंद है मैडम और बहुत ज्यादा गाने सुनते हैं उनके हम
1: जी। तो आज भी कुछ वही सुनना चाहेंगे?
0: जी मैडम आप कौन बोल रहे हैं?
1: छाया पाठक बोल रही हूँ।
0: जी जी, फिल्म का नाम है सुहाग, ये
1: जी
0: कपूर और अमिताभ बच्चन वाली। इसमें गाना है बाबी परवीन बाबी और शशि कपूर का है, क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो।
1: मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो। जी बिल्कुल सुनवाती। चलिए, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार
0: जी, नमस्कार।

0: हेलो, नमस्कार
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता
0: जी। स्वागत है
1: बेटा,
0: कार्यक्रम में।
1: राजस्थान से।
0: राजस्थान से बोल रहे हैं। अभी गर्मी
1: हाँ,
0: कैसी है वहाँ?
1: बहुत गर्मी हो रही है अभी तो। हाँ,
0: गर्मी हो रही है जी। तो आप वहाँ पे क्या खेती किसानी करते हैं?
1: नहीं, खेती किसानी नहीं, हम जो सीनियर सिटीजन
0: अच्छा, सीनियर सिटीजन है
1: है।
0: जी। तो आज कार्यक्रम है, फोन करें, गीत सुने, तो आप क्या सुनेंगे
1: गाना बताऊं,
0: जी बताएं।
1: ये सांझो सवेरे का है क्या?
0: आप तो फरमाइश रख
1: ओ
0: दें।
1: सजना मेरे घर आना।
0: अच्छा जी
1: हम तो पुराने गाने भी सुनते हैं, लिस्ट बना रखी है बहुत पहले से। लिया
0: जी सुनिएगा कल आप ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: फोन करें, गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: जसराम जाटव बोल रहा मैडम, जोराई से जिला शिवपुरी।
0: जसराम जाटव
1: हाँ
0: जी, पहले भी आपसे बात हुई है कई बार।
1: हाँ मैडम बात हुई है। कौन कौन बोल रही मैडम तुम?
0: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ।
1: हाँ मैडम आपसे बात मेरी हो गई।
0: जी, आज क्या पसंद है आपकी?
1: हमको मैडम सुनना है दिलवाले पिक्चर का गाना रहेगा मैडम,
0: दिलवाले का कौन सा?
1: जीता हूँ जिसके लिए मरता।
0: आप अक्सर यही गाना सुनते हैं और कोई फरमाइश नहीं है आपकी?
1: नहीं मैडम क्या है वो, मेरे को ये गाना अच्छा लगता है।
0: जी चलिए, नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम।

0: हेलो
1: हेलो, फोन करेंगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश
0: जी। हाँ
1: जी, फादर डे की पूरे मध्य प्रदेश टीम को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं
1: और बड़ी बहन आप बढ़िया हो?
0: जी। बढ़िया है
1: जी, हम ग्राम छात्र तहसील उदयपुरा जिला रायसेन से भगत जी बैरागी बात कर रहे हैं, और आपको कार्यक्रम हम आकाशवाणी जबलपुर से सुन रहे हैं।
0: आकाशवाणी जबलपुर से सुन रहे हैं। साफ सुनाई दे रहा है?
1: हाँ बिल्कुल, जबलपुर तो एकदम क्लियर सुनाई दिया था, और बापा भी साफ क्लियर सुनाई दिया था मध्य प्रदेश।
0: अच्छा, तो आप रोज सुनते हैं?
1: जी हम प्रतिदिन सुनते हैं रेगुलर 11 बजे 3 बजे तक।
0: 11 बजे से 3 बजे तक शाम को नहीं
1: हाँ
0: सुनते?
1: हाँ हम शाम को युवाणी सुना था बापा, 5:30 बजे तक मध्य प्रदेश को प्रसारण सुनाई दिया था जबलपुर पर।
0: जी। चलिए, अब फिर गीत भी बता दीजिए, आज क्या सुनेंगे?
1: जी, फिल्म को नाम है बीवी नंबर 1, और गाना के बोल है मुझे माफ करना ओम
0: बिल्कुल सुनाएंगे आपको।
1: साईं राम।
0: फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: मुझे

0: हेलो।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रधान सिंह बोल रहा हूँ। और
0: जी,
1: सबसे पहले आपको योग दिवस की ढेर ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी मैडम,
0: क्या कर रहे थे इस समय?
1: आज मेरा मैडम ड्यूटी नहीं था, घर पे था, नहा था के वही घर का काम कर रहा था। कई केंद्रों में फोन किया, रिकॉर्डिंग में जुड़ा और प्रसारण भी सुन रहा था, लाइट में भी लगा और आपके केंद्र में भी रिकॉर्डिंग में जुड़ा
0: जी।
1: हूँ। आकाशवाणी भोपाल में
0: जी,
1: बातचीत हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है और फोन लगा अच्छा लगा। मौसम बेहाल है,
0: मौसम
1: परसों पानी दिया
0: बेहाल
1: कल
0: है कि
1: बादल
0: अच्छा है
1: किया,
0: मौसम?
1: आज धूप किया है, बादल का नामो निशान नहीं है,
0: अच्छा, आज
1: इस
0: धूप
1: तरह उलट
0: निकली।
1: पुलट मौसम हो रहा है।
0: चलिए, कोई बात नहीं, आज धूप है तो कल छाया मिलेगी। बताएं क्या सुनेंगे आज?
1: फिल्म का नाम है हादसा और गीत के बोल है योगा योगा, गायक अमित कुमार। ये गीत है मैडम।
0: जी।

0: चुप।
1: प्रणाम। मैं महर्षियों का चेला किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
0: ओ महाराज।

0: जी हेलो, आकाश तिवारी फोन का जी सुन करके हूँ
1: जी।
0: जी मैं मछेरा कला जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, पवन विश्वकर्मा।
1: पवन विश्वकर्मा
0: जी
1: जी, वहाँ पे क्या आपका व्यवसाय है, कारोबार है, दुकान है, खेती है, क्या करते हैं?
0: ये दीदी हमें खेती है, किसानी करते हैं।
1: खेती किसानी करते हैं तो अभी क्या बोया, धान?
0: जी दीदी अब धान।
1: अच्छा, तो पानी वानी आ रहा है बराबर?
0: जी दीदी नलकूप है।
1: अच्छा, नलकूप से। बाकी बारिश का पानी?
0: जी बारिश हो रही, जब वो धान लगेगी बनिए भरा जाएंगी जब लगेगी धान।
1: अच्छा, अभी धान बोई नहीं है। बताएं आज कार्यक्रम में आपकी पसंद कौन सी है?
0: दीदी आज हमको सुनना है, हमें नहीं प्यार किया है, मुबारक हो तुमको सारी तुम्हारी।
1: जी
0: जी दीदी, मेरा फोन दीदी 4 महीने बाद लगा है मेरा।
1: अच्छा, ने प्रयास नहीं किया?
0: जी
1: प्रयास
0: हर दिन करता था, लगती नहीं थी कॉल।
1: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, आप इतने समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब आपका कॉल लग गया। इसी तरह अगर प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी कॉल लगता ही है ना। फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो,
1: नमस्कार,
0: नमस्कार जी, नाम बताएं अपना,
1: अनोखे सिंह
0: कहाँ से?
1: जिला धार,
0: धार से। पसंद बताएं अपनी
1: पर्सन राम जी की लीला है निहारी। सर
0: फिल्म कौन सी है?
1: ये फिल्म का तो नहीं, बाकी ये बहुत अच्छा गाना है, आ सकता है।
0: सुनवाते हैं। नमस्कार।
1: धन्यवाद सर जी।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हाथे गांव से बोल रहा था गोविंद जलोदिया।
0: गोविंद जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी बताएं, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया है सर, पानी की रास्ता देख रहे
0: पानी का रास्ता देख रहे हैं आप? क्या
1: हैं।
0: सभी देख रहे हैं, हम सभी को इंतजार है पानी का। एक झलक दिखलाता है कभी और एकदम से चला जाता है ना। चलिए, तो पानी आप क्या है, बिल्कुल बरसा भी नहीं क्या?
1: नहीं, पानी रुक गया, छीटे छाटे आके रह जाते हैं।
0: हाँ, ये बात सही है। तो आज क्या धूप निकली है?
1: हाँ,
0: ऐसा ही है इंतजार। खैर, ये भी कहते हैं इंतजार
1: जो
0: का
1: इंतजार में
0: फल
1: है
0: मीठा
1: वो
0: होता है।
1: मिलने में नहीं है फिर।
0: जी, अब देखिए इस बार किस तरह से बारिश होती है, कितनी होती है, बताएं
1: सर ये
0: कौन।
1: गाना था सर, वो जो है बहुत दिन से मतलब अटका हुआ है, बेजू बावरा का है सर, तू गंगा की मौज यमुना की धारा।
0: जी, तू गंगा की मौज में जमुना की धारा। जी, सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम यही समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति छाया पाठक की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ ही उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने संस्कृत श्लोक साझा करते हुए कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री डॉ एल मुरुगन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉ मुरुगन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉ मुरुगन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक पोस्ट में कहा है कि गरीबों युवाओं और महिलाओं तथा किसानों के अटूट विश्वास से मध्यप्रदेश सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारी सरकार अग्रणी मध्यप्रदेश की भावना के साथ हर वर्ग के कल्याण हेतु कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रगति पथ ब्रोशर और द्विमासिक पत्रिका रचना के विमोचन के साथ ही शिक्षाविदों को सम्मानित भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक जबलपुर रीवा और सागर संभाग के जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। प्री मानसून के चलते आज प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में 30 आंधी और बारिश का अलर्ट है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की 15 सदस्यीय एक दिवसीय टीम की घोषणा कर दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं और ये समय है आपके पसंद के गीतों से सजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। तो कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं अग्नि साक्षी के इस गीत के साथ, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने, बोल समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवण का है और पसंद है आप सभी श्रोताओं की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की,

साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म अग्नि साक्षी का ये गीत।

बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही पूजा, छुटकी शरद, पूनम श्रेया और समस्त माखी।

भतीजा परिवार, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाड़कर, सरिता गुहाड़कर, सिद्धांत गुहाड़कर, प्रिंस एकांश गुहाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गुहाड़कर, आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म मन का गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। बोल समीर के हैं, संगीत संजीव दर्शन का। लीजिए सुनिए।

कृष्णा। इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक की आवाज़ में। बोल आनंदराज आनंद के हैं और संगीत है अनु मलिक का। फरमाइश करता है आप सभी सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली की।

घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। आप सभी ने सुनना चाहा है आनंद बख्शी का लिखा कल्याण जी आनंद जी का संगीत से सजाया हुआ गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और मनहर उदास ने, और फिल्म का नाम है त्रिदेव।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म इश्क से। आवाज़ें कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की हैं। गीत लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीतबद्ध किया है अन्नू मलिक ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। साथ ही सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत

0: और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242। सुनो ना।
1: हाँ।
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
2: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।

0: मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो, कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
2: आकाशवाणी,
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी की चौथी कड़ी।

0: पिछली कड़ियों में आपने सुना कि धारा नगरी के महाराज द्युम्न सेन ने राजकुमार विजय श्रवा को प्यार करने के कारण नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया। राजमाता ने ताने कसे तो राजकुमार राजमहल छोड़कर चल पड़ा। उसे पता चला कि भुवन मोहिनी इंद्रप्रस्थ गई है, सो इंद्रप्रस्थ पहुंचकर यमुना तट पर एक आश्रम में ठहर गया। उसने खुद को धारा नगरी का एक श्रेष्ठ बताया ताकि वो कहाँ है ये राज परिवार को पता न चले। अब इसे संयोगी समझिए कि इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन ने ही भुवन मोहिनी को आश्रय दे रखा था। राजा आदित्य सेन अपनी बहुत ही सुंदर पुत्री चंद्रहासिनी के लिए उपयुक्त वर की खोज में थे ही। उन्हें पता चला कि यमुना तट पर उनके आश्रम में एक श्रेष्ठी ठहरा हुआ है जो दिखने में श्रेष्ठी नहीं बल्कि कोई राजवंशी लगता है। उन्होंने पता लगाने के लिए नर्तकी भुवन मोहिनी को कहा। चंद्रहासिनी को राग दीपक रागिनी सिद्ध करने आश्रम जाना ही था। भुवन मोहिनी तो उसकी गुरु ही थी। दोनों वहां गए और जान गए कि वो आगंतुक विजय श्रवा ही है। चंद्रहासिनी का गायन सुनकर राजकुमार उस पर मुग्ध हो गया। जब दोनों रथ पर लौट रही थी तो राजकुमार ने दोनों को देखा भी। अब आगे की कथा सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की चौथी कड़ी में।
1: महाराज आदित्य सेन की जय हो। महाराज, नर्तकी भुवन मोहिनी आपके दर्शन चाहती हैं।
2: उसे अंदर ले आओ।
3: महाराज को प्रणाम।
2: कुछ पता लगा भुवन मोहिनी? राजोद्यान में ठहरने वाला युवक धारा नगरी के सर्वश्रेष्ठ का पुत्र है या सम्राट द्युम्न सेन के उत्तराधिकारी, भारत के भावी सम्राट?
3: यही सत्य है महाराज, वो राजकुमार विजय श्रवा ही है।
2: अच्छा,
3: और आपको प्रसन्नता होगी ये जानकर कि ये सत्य राजकुमारी चंद्रहासिनी भी जान गई हैं।
2: राजकुमारी को कैसे ज्ञात हुआ?
3: उनके पास राजकुमार विजय श्रवा का चित्र पहले से ही है। वे चित्र के साथ मिलाकर पहचान गईं कि वो युवक वास्तव में राजकुमार ही हैं।
2: नर्तकी, आज तुमने मुझे वांछित प्रसन्नता दी है। ये लो तुम्हारा पुरस्कार।
3: धन्यवाद महाराज।
2: भावी सम्राट के सम्मान में समस्त राजकार्य स्थगित किए जाते हैं और इंद्रप्रस्थ में सर्वत्र महोत्सव मनाया जाएगा। नर्तकी।
3: आज्ञा महाराज।
2: तुम्हारे लिए आदेश है कि महोत्सव में तुम हमारे द्वारा दिए गए इन्हीं आभूषणों को धारण करके अपने नृत्य और संगीत से राजकुमार विजयश्रवा और सारे सभासदों का मनोरंजन करोगी।
3: आदेश शिरोधारी है महाराज।
4: युवराज, युवराज, युवराज, तनिक बताइए तो परिसर में कौन आ रहा है आपसे मिलने?
5: भुवन मोहिनी।
4: भगवान करे इसका मिलन इस परिसर में तो क्या इस जन्म में भी आपसे ना हो।
5: कौन आ रहा है मित्र?
4: अरे मित्र, आपसे मिलने स्वयं महाराज आदित्य सेन आ रहे हैं।
5: महाराज आदित्य सेन कहाँ है?
4: वो देखिए।
5: महाराज आदित्य सेन को सादर प्रणाम।
2: प्रणाम राजकुमार विजय श्रवा। निश्चित ही

0: आप अत्यंत गोपनीय विधि से यहाँ पर रुके थे, परंतु हमें ज्ञात हो गया। हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप अब हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए।
1: हमें स्वीकार है महाराज।
0: आभारी हूँ युवराज, भारत के भावी सम्राट के सम्मान में इंद्रप्रस्थ नगरी में महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर आप अपने समस्त साथियों सहित सादर आमंत्रित हैं।
2: मित्र, आमंत्रण स्वीकार करिए।
1: आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है महाराज।
0: आइए राजकुमार, आपका आसन ये है।
1: धन्यवाद महाराज।
3: सारथ।
4: हाँ रण्यक।
3: कुछ समझ रहे हो?
4: अवश्य रण्यक, महाराज आदित्य सेन हमारे राजकुमार को अपना पाहुन बनाना चाह रहे हैं।
3: तात्पर्य ये कि हमने जो सोचा था सब कुछ उसके अनुरूप ही हो रहा है।
4: वो कैसे?
3: अरे युवराज का विवाह राजकुमारी चंद्रहासिनी जैसी अपूर्व सुंदरी से हो रहा है, तो फिर वो भला उस नर्तकी के मोह में क्यों पड़ेंगे?
4: ये तुमने ठीक कहा।
3: अब तो भगवान से बस इतनी विनती है कि बस कुछ दिन और भुवन मोहिनी को दूर रखें हमारे राजकुमार से।
5: शांत शांत, कृपया शांत रहें। महाराज आदित्य सेन और हमारे माननीय अतिथि राजकुमार विजय शर्मा महोत्सव स्थल पर पधारकर अपने अपने आसनों को ग्रहण कर चुके हैं और अब प्रस्तुत हैं राजकुमार के स्वागत में अद्भुत नृत्य और संगीत। महाराज आपके आदेश की प्रतीक्षा है।
0: आदेश है, कार्यक्रम आरंभ किया जाए।

0: वाह वाह अरण्यक, नर्तकी की पदगति और अनावृत हाथों से लगता है कि वो अत्यंत ही सुंदर है, परंतु मुखड़े पर घूंघट व्यवधान बन रहा है।
1: चिंता न करो, वो आगे आकर महाराज और राजकुमार को प्रणाम करेगी और फिर अपने चेहरे से घूंघट उठाएगी।
0: अरे हाँ, तुमने सही कहा, अब वो घूंघट उठा रही है।
1: ये कहीं भुवन मोहिनी तो नहीं?
0: क्या कह रहे हो, तब तो अनर्थ हो जाएगा।
1: अरे ये तो वही है,
0: भुवन मोहिनी।
1: हाँ
0: तो फिर उठो।
1: क्यों?
0: युवराज को यहाँ से दूर ले चलें।
1: अरे अब ये प्रकरण हमारे हाथ से निकल चुका है।
0: अच्छा तो फिर देखो कि युवराज की प्रतिक्रिया क्या है।
1: लगता है युवराज ने भुवन मोहिनी को पहचाना ही नहीं।

0: मना है कि ऐसे समय में जब मेरी प्राणेश्वरी गीत के माध्यम से अपनी असह्य पीड़ा मुझे सुना रही है, मुझे अपने पास बुलाने का प्रयत्न कर रही है, उस समय मैं राजसी बंधनों में जकड़ा हुआ हूं।
1: कितनी पीड़ा है सखी भुवन मोहिनी के स्वर में। मैं देख रही हूँ कि राजकुमार विजय श्रवा भुवन मोहिनी की पीड़ा से कितने एकरस हो चुके हैं। मानो ये उन्हीं के लिए गाया जा रहा हो।
2: वाह, तुम्हें धन्यवाद है भुवन मोहिनी, तुम अपने संगीत नृत्य से राजकुमार का हृदय जीत रही हो। अवश्य ही मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, परंतु मैं देख रहा हूँ कि राजकुमार भुवन मोहिनी की ओर वैसे ही खींचे जा रहे हैं जैसे चुंबक की ओर लोहा खींचता है। भय लग रहा है कहीं भुवन मोहिनी की कला पर राजकुमार कुछ अधिक ही मोहित न हो जाए।
0: भुवन मोहिनी, अर्धरात्रि की इस निस्तब्ध वेला में हृदय को चीर देने वाली तुम्हारी ये विहाग रागनी ऐसे लग रही है मानो कोई देवकन्या शाप वशात स्वर्ग भ्रष्ट होकर अपने जीवन की करुण गाथा सुना रही हो। अब मैं अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहर सकता, नहीं देख सकता अपनी जीवन दाहिनी को इस प्रकार अश्रु निर्झर करते।
2: क्या हुआ युवराज, आप चल दिए?
0: महाराज, चौथा प्रहर होने को है, अब विश्राम चाहता हूँ।
2: नृत्य रोक दिया जाए।
3: बहुत सुंदर, अति सुंदर, संपन्न हुआ। माननीय अतिथि अब विश्राम हेतु जा रहे हैं, सभी लोग शांतिपूर्वक अपने अपने गृह की ओर प्रस्थान करें।
4: कितना सुंदर गायन हुआ भुवन मोहिनी का। राजकुमारी, ये है आपका रथ, इधर आइए।
1: राजकुमार का रथ कहाँ है?
4: ठीक आपके पीछे।
0: अरण्यक?
5: हाँ मित्र,
0: तुम मेरे साथ ही रहना।
5: साथ ही हूँ मित्र, और राजकुमारी जी भी साथ ही हैं।
0: साथ ही हैं?
5: हाँ।
0: कहाँ?
5: अरे वो आगे आगे उन्हीं का रथ जा रहा है।
4: सुनो सारथी, रथ को बहुत तीव्र मत भगाना।
1: तुमने ऐसा क्यों कहा सारथ से?
4: ताकि आपका और आपके राजकुमार जी का रथ साथ साथ चले।
5: क्या सोच रहे हैं मित्र?
0: अरे ये पुष्पहार कहाँ से आ पड़ा मेरे गले में?
5: पुष्पहार? अरे हाँ, संभवतः ये लीला आगे वाले रथ से कराई गई है।
4: राजकुमारी जी, देखिए तो, एक चंद्रदेव ऊपर आकाश में हास कर रहे हैं और एक दूसरे चंद्रदेव पीछे रथ से आपका पीछा कर रहे हैं। तनिक देखिए तो पीछे मुड़कर।
1: अरे उनके गले में तो वही पुष्पमाला है जो मैंने पहन रखी थी, वो वहां कैसे पहुंच गई?
4: मैंने फेंकी थी, ठीक उनके गले में जाकर पड़ी। राजकुमार जी, राजकुमारी जी कह रही हैं कि ये उनके पूजा के पुष्प हैं, आप स्वीकार करेंगे ना?
5: अरे मित्र, उत्तर दीजिए ना।
0: मैं क्या बोलूं मित्र, मेरी स्थिति तो दो नावों पर सवार व्यक्ति जैसी है।
5: तात्पर्य?
0: एक ओर मेरी प्रिया भुवन मोहिनी और दूसरी ओर अनुपम सुंदरी राजकुमारी जो मन ही मन मेरा वरण कर चुकी है।
5: अरे मित्र, ये बाद में सोचना, पहले उस दासी के प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। अरे देवी जी, राजकुमारी जी से कहिए कि राजकुमार जी को उनका पुष्प स्वीकार है।
4: धन्यवाद, बहुत सोचकर उत्तर दिया, चलो फिर भी मान लेते हैं। अब कृपा करके उनसे ये भी कह दीजिए कि भूले नहीं, ऊपर चंद्रदेव उनके इस कथन के साक्षी हैं।
5: अरे देवी जी, आप चिंता न करिए, ऊपर चंद्रदेव हैं, नीचे मैं भी हूँ।
0: क्या कह रहे हो मित्र?
5: अरे मैं तो साक्षी की बात कर रहा था।
1: अनुकूल समय आने दो सखी, फिर स्मरण कराने की आवश्यकता ही न रह जाएगी।
4: अरे अरे, अनाथ हो गया, सारथी रथ

0: क्या हुआ?
1: अरे मित्र, राजकुमारी का रथ रुक गया और ये लो,
2: अपना भी सारथी अत्यंत निपुण है, दोनों ही रथ रुक गए हैं। अब आप नीचे उतरिए।
3: क्या हुआ सखी, रथ को क्यों रुकवा दिया?
4: आपकी मणिमाला खो गई।
3: क्या? अरे

0: अरण्यक? हाँ, क्या हुआ?
1: आज्ञा दीजिए मित्र, अभी पता लगाता हूं।
0: चलो मैं भी चलता हूं।
1: हाँ, क्यों नहीं,
2: यही
0: गिरी
2: देखिए ना,
0: होगी।
2: यहीं पे तो,
3: देखो
2: यहीं पे हो सकती
3: ये
2: है।
1: हम जान सकते हैं कि रथ क्यों रुक गया यहां पर? अरे,
2: राजकुमारी जी की मणिमाला खो गई है।
1: किससे खो गई?
2: मुझसे?
1: ये तो होना ही था।
2: क्या मतलब?
1: अरे, जिस राजकुमारी की सखी आप जैसी हो तो मणिमाला को तो खोना ही था।
2: अरे, मुझ पर आरोप लगाने वाले आप कौन हैं?
1: मैं राजकुमार विजय शर्मा जी का बाल सखा हूं, अरण्यक, इसलिए अनुभव से कह रहा हूं। और देवी जी, आप कौन हैं?
2: मैं भी कम अनुभवी नहीं हूं।
1: वो तो लग ही रहा है।
2: मैं राजकुमारी जी की सबसे प्रिय सखी हूं।
1: अच्छा,
2: हाँ,
0: अरण्यक, चलो मणिमाला को खोजने में सहायता करें।
2: आप युवराज, जब आप सहायता करेंगे तो मिल जाने में कोई संदेह ही नहीं है।
0: किधर गिरी होगी?
2: राजकुमार, वो उधर दूर उस तरफ।
1: ओ, राजकुमार जी तो मणिमाला खोजने में लग गए। अब हम दोनों सखा सखी को क्या करना होगा?
2: ढूंढते ढूंढते कहीं दूर से सब देखना होगा।
1: अच्छा, तो फिर आओ।
2: हाय, राजकुमार जी मेरी सखी के समीप जा रहे हैं।
1: दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं
2: हमारी लाडो लजा रही हैं।
1: और मेरे सखा और पास आ रहे हैं।
2: आगे कुछ मत बोलो,
1: लो, चुप हो गया।
2: ऊपर चंद्रदेव को निहारो।
1: ये लो।
0: आह, चंद्रहासिनी, अद्भुत सौंदर्य है तुम्हारा।
4: ये रूप का देवता जो मेरे सामने खड़ा है, न जाने कितनी नारियों का महान आकर्षण बना होगा, न जाने कितनी चंद्रमुखी लारियां इसके प्रेम से निराश होकर या तो इसे अभिशाप दे रही होंगी या दर्द भरी टीस लिए हृदय के टूटने का परिणाम भुगत रही होंगी।
0: चंद्रहासिनी, तुम्हारी ये गुथी हुई केश राशियां जो त्रिविध समीर के झोंके खा खा कर नाच पिलाई हुई नागिन की तरह लोचे खा रही हैं, तुम्हारी हल्की बासंती रेशमी साड़ी सुरभित द्रव्यों के मद को वायुमंडल में बिखेरती हुई मेरी सुप्त रति भावना को जागृत कर रही है।
4: ओह, मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रही हूं, परंतु मैं जानती हूं कि पुरुष सौंदर्य मद में आकर अनेक कोमल प्रसून हृदय समर्पित नारियों के सर्वस्व समर्पण को ठुकरा देता है। यदि ऐसे पुरुष की समर्पित अभिलाषाओं पर मैं प्रहार करूं तो?
3: आई,
1: क्या हुआ?
2: मेरी सखी तो हमारी ओर आ रही है।
1: अच्छा,
2: आओ यहीं विशाल शिला के पीछे छुप जाएं।
1: अरे रुको, तो मेरे सखा उनसे कुछ कह रहे हैं।
0: इंद्रप्रस्थ नगर की राजपुत्री को धारा नगरी के युवराज का अभिवादन स्वीकार करना होगा। ये तो आमंत्रित अतिथि का सबसे बड़ा अपमान है। राजकुमारी, अभिवादन स्वीकार हो।
4: प्रणाम राजकुमार।
0: हमारी ये अमूल्य एकांत घड़ियां वरदायिनी सिद्ध हो।
4: कुछ कहा आपने?
0: नहीं तो?
4: भाभी सम्राट, हम क्षमा चाहते हैं आपसे।
0: क्यों, किस लिए राजकुमारी? मुझे तो अपराध का ज्ञान ही नहीं, फिर क्षमा कैसी? नहीं बताएंगी? चलिए, अपने मणिमाल के विषय में ही बताइए। कब और कहां गिरा था और कैसे?
4: मुझे स्वयं कुछ ज्ञात नहीं है देव। वो तो मेरी सखी थी जिसने खो जाने की चर्चा चलाई।
0: क्या मैं जान सकता हूं कि उस निर्जीव मणिमाला से क्या अपराध हो गया था कि राजकुमारी ने उसे अपने हृदय से दूर किया?
4: दी, इसमें मेरा नहीं, मेरी सखी का हठ था। उसे निकाह था।
0: क्या?
4: जो अपने हृदय स्थल को इन मणियों की माला से सजाएगा वो प्रत्येक नेत्र की प्रिय अतिथि बनेगी और साम्राज्य भी।
0: आह, चंद्रहासिनी,
4: क्या भाभी सम्राट

0: मुझ पर सदैव होकर मुझे एक दो प्रश्न करने का अधिकार देंगे?
1: अवश्य राजकुमारी।
0: मुझे भय है कि मेरा प्रश्न कहीं भाभी सम्राट को ना रुचे और मुझे कोप भाजन बनना पड़े।
1: नहीं नहीं, शंकाओं का समाधान आवश्यक है।
0: तो फिर कहती हूँ, मुझे संदेह है कि आज की राजसभा में भाभी सम्राट को मनोरंजन के स्थान पर मनोवेदना प्राप्त हुई है।
1: वो कैसे राजकुमारी?
0: स्वयं अपने नेत्रों से देखा कि कैसे भुवन मोहिनी संगीत लहरियों में अतीत की वेदनापूर्ण संस्मरणों को भावात्मक ढंग से व्यक्त कर रही थी और कैसे उस पर आपकी भावभंगिमाएं मानो किसी प्रच्छन्न प्रेम कथा को प्रकट कर रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो कौन सी भाग्यशालिनी रमणी है जिसने भारत के भाभी सम्राट के हृदय पर वियोग, तीस और जलन के बीज बोए हैं? यदि मेरे प्रश्न ने भाभी सम्राट को विचलित कर दिया हो तो मैं क्षमा याचना करते हुए अपना प्रश्न लौटा लेती हूँ।
1: नहीं राजकुमारी, तुम्हारा प्रश्न उचित है। प्रत्येक नर नारी के जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य उपस्थित होता है जब वो अपना सर्वस्व एक दूसरे के लिए समर्पित करते हैं। किंतु राजकुमारी, प्रेम की गोपनीयता में जो शांति और संतोष है वो उसके प्रकाशन में नहीं। प्रकाशन करने में तो प्रेम तुच्छ और स्वार्थपूर्ण हो जाता है। इस प्रथम परिचय में ही अपने जीवन के गोपनीय तथ्यों को कैसे प्रकट करूं? राजकुमारी, आज की रात कितनी रम्य और परस्पर परिचय की मधुर भावना से कितनी सलोनी प्रतीत हो रही है। गिनती किए थोड़े से क्षण मेरे जीवन में अमूल्य संस्मरणों के प्रतीक बनेंगे जिन्हें भुलाया ना जा सकेगा।
0: यही तो मैं भी सोचती हूँ, किंतु
1: किंतु क्या?
0: यही कि पुरुष मधु प्रदेह न जाने कितने बार ऐसे मधु मिलनों को भूलते हुए पाए गए हैं।
1: यह तो अपवाद मात्र है राजकुमारी, कोई निश्चित सिद्धांत नहीं। ज्ञात होता है कि राजकुमारी का वो मूल्यवान हृदय हार सचमुच खो गया है, क्योंकि आपकी सखी और मेरे सखा दोनों ही उसे ढूंढते हुए न जाने कहां चले गए।
0: हाँ भाभी सम्राट, वो हृदय हार मेरे लिए सचमुच में अमूल्य है, और कोई भी अमूल्य वस्तु एक बार खो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं होती।
1: चंद्रहासिनी, ये मेरा हृदय हार तुम ग्रहण करो।
0: ये क्या, आपने अपनी मणिजड़ित माला मुझे पहना दी? इसके बदले क्या मैं कुछ दे सकती हूं? अपना हाथ इधर देने की कृपा करेंगे क्या?
1: क्यों,
0: ये मेरी ओर से प्रेम उपहार।
1: अंगूठी?

0: भुवन मोहिनी। इसकी चौथी कड़ी का प्रसारण अभी आपने सुना संग्रहालय से के अंतर्गत। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:58 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्योपुर जिले स्थित कुनो नेशनल पार्क में सफारी कर चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। राष्ट्रपति आज अपना 5 दिवसीय प्रदेश दौरा समाप्त कर श्योपुर से ग्वालियर होते हुए नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ ही उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने संस्कृत श्लोक साझा करते हुए कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ मुर्गन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉ मुर्गन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक पोस्ट में कहा कि गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के अटूट विश्वास से प्रदेश सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारी सरकार अग्रणी मध्य प्रदेश की भावना के साथ हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। समारोह में अकादमी द्वारा प्रकाशित प्रगति पथ ब्रोशर और द्विमासिक पत्रिका रचना के विमोचन के साथ ही शिक्षाविदों को सम्मानित भी किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक जबलपुर, रीवा और सागर संभाग के कुछ जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। प्री मानसून के चलते आज प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 1:01 अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान है।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनुराधा पेंट से। श्रोताओं, आजकल डिजिटल युग है, तो स्वास्थ्य सेवा भी डिजिटल क्यों ना हो। हम सभी को जरूरत पड़ने पर डिजिटल हेल्थ सर्विस का लाभ उठाना चाहिए। ये एक ऐसी सेवा है जिसमें

इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य तकनीकी उपकरणों की मदद से घर बैठे या आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। टेलीमेडिसिन और टेलीहेल्थ के माध्यम से घर बैठे वीडियो कॉल या फोन के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं या सलाह ले सकते हैं और मोबाइल एप्स के इस्तेमाल से डॉक्टर के पर्चे को अपलोड कर घर बैठे दवाइयां भी मंगवा सकते हैं। वहीं स्मार्टफोन एप्स, स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर हमारे रोजाना चले गए कदमों, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और हमारी नींद का पूरा रिकॉर्ड हमें देती है, जिसके जरिए हम वक्त रहते समझ सकते हैं कि हमारी सेहत का मीटर ठीक चल रहा है या नहीं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा भी हम सभी के लिए उपलब्ध है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA या इसे आभा नंबर भी कहते हैं। जिस तरह हम बैंक लॉकर में अपने कीमती सामान को रखते हैं, उसी तरह आपके स्वास्थ्य से संबंधी सभी रिपोर्ट्स, डॉक्टर के पर्चे डिजिटल हेल्थ लॉकर में रहते हैं, यानी कि पूरा लेखा जोखा कंप्यूटर पर सुरक्षित रहता है, तो आपको अस्पतालों के पर्चों को लेकर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। बस आपको 14 अंकीय पहचान की जरूरत है, जिसे देश भर में किसी भी अस्पताल में बताने पर आपको आपके स्वास्थ्य की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। आप ये खाता आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वेबसाइट पर जाकर अपने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर बना सकते हैं या फिर मोबाइल ऐप पर आभा डाउनलोड करके भी अकाउंट बनाया जा सकता है। ये खाता न सिर्फ स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है बल्कि कागज पत्री रखने की जरूरत को भी कम करता है। लेकिन हम आपके आनंद में कोई कमी आने नहीं देंगे। सुनवाते हैं आपको ये गीत।

हिंदुस्तान का तेरा तू। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ।

0: श्रोताओं, बारिश की दस्तक हो चुकी है और ऐसे में कई बार बच्चों को बड़ी दिक्कत होने लगती है। खास तौर पे देखा जाता है कि कभी सर्दी, जुखाम, फिर कभी कह रहे हैं कि पेट दुख रहा है। तो इन सब मौसमी समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर पंकज जायसवाल जी। आप होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बाल्यावस्था की सामान्य समस्याएं और होम्योपैथिक चिकित्सा। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को, मेरा नमस्कार।
0: सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि होम्यो चिकित्सा पद्धति क्या है और किस तरह से इलाज किया जा सकता है।
1: होम्योपैथी छोटी बीमारियों के लिए नहीं है, ऐसा जो सोचते हैं कि केवल सर्दी, जुखाम या मीठी गोलियां हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े से हमारे मानसिक बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या डाइजेशन की कोई भी समस्या, किसी भी स्किन की समस्या, महिलाओं की समस्या, सभी पर बहुत ही अच्छा जो है इसका योगदान भी है और उपचार भी है।
0: ज्यादातर अभिभावक बच्चों को कोई समस्या होते ही अन्य किसी पद्धति में चले जाते हैं, तो क्या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बच्चों के लिए सुरक्षित है?
1: बिल्कुल सुरक्षित है। किसी भी तरीके से, किसी भी अवस्था में होम्योपैथी का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों को लेकर के गार्जियन, उनके प्रति प्रेम रहता है, अपने आप को ये मान लेता है कि ना मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। तो हम इस बात में कहेंगे कि होम्योपैथी का जो उपयोग है, जो दवाइयों का जो चुनाव किया जाता है, जो आपके लक्षण के आधार पर उसका चुनाव होता है, सर्दी, खांसी, निमोनिया, जैसे बारिश के समय में क्या लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दी, जुखाम, गले में प्रॉब्लम आ जाता है, या उसको बहुत तेजी से फीवर आ जाता है, निमोनिया की दिक्कत हो जाती है, तो बच्चों को उसको होम्योपैथी प्रथम दृष्टया में लोगों को दिखाना चाहिए। अगर इमरजेंसी कोई बचती है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हम वहां पर किसी भी विषय में ये बात नहीं कहता हूं कि हमें उनका सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारा ये सोचना है कि ज्यादा भारी दवाइयों को एक बार में बच्चों को देने से पहले होम्योपैथी का जरूर सहारा लेना चाहिए।
0: सामान्य तौर पर बच्चों में किस तरह की समस्याएं हैं जो देखने में आती हैं, सुनने में आती हैं, और होम्योपैथी इसमें कितनी कारगर रहती है?
1: सामान्य तरह से अभी जैसे बारिश का मौसम आ रहा है, हर मौसम में बीमारियां होती हैं, बारिश का मौसम में संक्रमण ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय बारिश के समय में बहुत सारे हमारे जीवाणु हैं, फंगस हैं, ये हमारे गंदगी की वजह से घरों में और किसी भी तरीके से काफी नमी की वजह से हमारे शरीर में उनका उत्पन्न हो जाता है। तो अगर हम जो है रोकथाम चाहते हैं तो सबसे पहले सुरक्षा हमारी जरूरी है। जरूरी किस तरीके से है कि बारिश का मौसम है, बचें, शाम के समय भीगते हुए आए और पंखे के नीचे सो गए, सर्दी हो जाता है, सर अगर ठंडा हुआ, सर अगर हमारा किसी तरीके से नमी बनी रही, तो वो हमें गले को, वायरल को लेकर के बहुत तेजी से संक्रमण फैल जाता है। तो बच्चों को बारिश में भीगना हम मना नहीं करते, भीगना चाहिए, लेकिन बच्चों के शरीर से जो पानी रहता है उसको तावल से अच्छे से साफ करके, सोते समय हल्का सा कुनकुना सरसों का तेल है उसको बॉडी के हर पार्ट में उसको थोड़ा सा मालिश करना चाहिए, लगाना चाहिए, हल्के कपड़े पहनना चाहिए। तो रोकथाम में कुछ होम्योपैथी की जैसे दवाइयां शुरुआती दौर में, गले में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी जुकाम की आशंका लग रही है या बुखार आने का मुझे लग रहा है, शरीर में टूटन आ रहा है, तो वहां पर हमारे यहाँ दो दवाइयों का बहुत अच्छा जो है उसका परिणाम है, जैसे आर्सेनिक है और मर्कशॉल, इनको दवाइयों को जरूर दे देना चाहिए, एक ही डोज में या दो डोज में ही उसका असर आ जाता है।
0: जी, जैसे आपने बताया कि बरसात में बच्चों में संक्रमण का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो बच्चों में हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, मैंने अभी जो दवा का जिक्र किया मैंने, आर्सेनिक, आर्सेनिक एक अपने में इतनी बड़ी दवा है कि अगर हमने उसको सुबह खाली पेट 3 दिन दवा दे दिया, तो बारिश के मौसम में जितने फंगल इन्फेक्शन होते हैं, खाने में कुछ दिक्कत आ जाती है तो फूड पॉइजनिंग की दिक्कत आ जाती है, बारिश में भीग गए तो लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, या किसी भी तरीके से कुछ भी अगर उसमें बात आती है, तो आर्सेनिक अपने में पूरी दवाई है।
0: जी।
1: 3 डोज उसको सुबह खाली पेट 3 दिन ले ले, लेकिन अगर उस प्रतिरोधक दवाइयों के बाद किसी भी तरीके से अगर वो भारी समस्या में या उसका जो रोग है वो बढ़ रहा है, तो जरूर डॉक्टर से परामर्श ले।
0: तो ये कितने समय तक लेना चाहिए और कितने समय तक लेने के बाद इसे बंद कर देना चाहिए?
1: आर्सेनिक दवाइयां सिंगल डोज है 200 पावर में 3 दिन लेना चाहिए, खाली पेट सुबह 3 दिन, और उसे 3 महीने के बाद फिर से रिपीट कर लें। घर के सभी सदस्य ले सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो।
0: आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि और किस तरह के उपाय हो सकते हैं जिनसे बच्चों को बार बार बीमार पड़ने से बचाया जा सके।
1: ये बात करूंगा मैं मोबाइल के बारे में। बच्चे की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, चक्कर आ रहा है, कोई भी टेस्ट कराने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है। अभिभावक से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को मोबाइल में क्या चीजें उनके लिए जरूरी है उन पे निगरानी रखें और कितना समय दें। सुबह का नाश्ता सबसे पहली ड्यूटी है कि सुबह उठाना, उसको योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, जैसा हम सिखाएंगे बच्चा वैसे बनेगा।
0: होम्योपैथिक दवाइयों के साथ में क्या खाने पीने का भी कोई परहेज रहता है?
1: बीमारियां किस तरीके की है, जैसे अब डाइजेशन की कोई बीमारियां है, दस्त का पेशेंट आ गया तो हम दस्त में थोड़ी कहेंगे कि कुछ चीज खाना है। तो दस्त के हिसाब से जो मूंग की खिचड़ी खाने को डॉक्टर बोलता है उसके पीछे रीजन होता है। मूंग और चावल जो पका करके जब बनाते हैं तो उसमें एक श्लेष्म बनता है जिससे हमारे आंतों को पचाने में सुपाच्य होता है और वो दस्त को रोकता भी है। तो जो बीमारियां जिस तरीके की रहती हैं उसमें रोकथाम खाने का जरूर रहता है, हर बीमारियों में नहीं रहता है। होम्योपैथी में ये बात जरूर करते हैं कि भाई होम्योपैथी में तो ये नहीं खाना, कच्चे लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये समाज में एक होम्योपैथी के प्रति एक धारणा है कि यार बड़ा वहां पर परहेज बताया जाता है। होम्योपैथी का जो सिद्धांत है ये अपने में इतनी मजबूत है कि इसमें छोटे छोटे खानों की चीजों से वो उसकी बीमारियों की जो क्षमता है ठीक करने की वो कमजोर नहीं पड़ती है। बशर्ते हमें ये समझना जरूर होता है कि कौन सी बीमारियों को किसमें हमें रोकथाम करना है।
0: अब हम बात करते हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं, बाहर रहते हैं, काफी समय तक खेलते कूदते हैं, तो उन बच्चों के संक्रमित होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, खास तौर पर बारिश के मौसम में। तो उसे बचाने के लिए होम्योपैथी में क्या कोई कारगर उपाय है?
1: सबसे पहले तो हम जितनी बीमारियां हैं अपनी सुरक्षा खुद से करें। जैसे बारिश के मौसम में संक्रमण ज्यादा रहता है, उसका कारण रहता है कि नमी। ह्यूमिडिटी बॉडी में मौसम में होने के नाते कहीं भी हर जगहों पर नमी की वजह से फंगस का बढ़ने का जो सिरा होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए कभी भी कुछ काम करें तो अपना साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि साफ जितना रखेंगे संक्रमण उतना कम होगा। बड़े बच्चे हैं, अपनी बातों को डॉक्टर के सामने बता सकते, छुपाने की जरूरत नहीं है। जैसे बड़े बच्चे किसी कुछ बड़े बीमारी में कुछ रहते हैं तो छुपा ले जाते हैं, और वो छुपाने के साथ में बताते सोचते हैं कि गार्जियन को बताऊंगा तो वो डांटेंगे मुझे। तो जो बच्चे हैं इसलिए गार्जियन से बताते नहीं, तो बताना जरूर चाहिए, नहीं वो गंभीर समस्याओं का संक्रमण बारिश के समय में होता है। वायरल इन्फेक्शन, इसमें सबसे बड़ी बात जो हमने देखा है एक निमोनिया, सर्दी जुकाम हुआ, खांसी आ रही है, धीरे से भीग गया, बारिश में आए, सो गए, पंखे की हवा लगा, लंग्स पूरी तरीके से कंजेस्ट हो गए। हम यहाँ पर सचेत करूंगा कि अगर ऐसी दिक्कत है तो डॉक्टर से परामर्श लें। अब रही बात होम्योपैथी की, बच्चों में अगर कुछ इसी तरीके से है तो हम सब नर्सिंग मेडिसिन बोलते हैं, सेम्बुगस नाइग्रा 30 पोटेंसी में 3 बार। बड़े बच्चे हैं, कभी भी सर्दी जुकाम बुखार खांसी के

0: साथ में अगर किसी भी समस्या का रोग अगर उत्पन्न हो रहा है तो फेयर ऑफ हाउस 6X इसको जरूर याद कर लें। मैं इस दवा के बारे में इतनी कॉन्फिडेंस में और अपने 15 सालों का अनुभव मैं आपसे शेयर करूंगा कि फेयर ऑफ हाउस 6X अगर मैंने बच्चों को दे दिया, चाहे छोटे बच्चों को दे दिया चाहे बड़े बच्चों, बिल्कुल भी आप इस दवाई को दे दीजिए, पूरे कफ को जो कंजेस्ट है पूरे धीरे धीरे बाहर कर देगा, आपकी खाने की क्षमता, आपकी जो बुखार है, जो कंजेशन है, धीरे धीरे वो अपने आप में नॉर्मल कर देगा।
1: हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत छोटे जो नवजात बच्चे रहते हैं तो जब हम उन्हें दवाई दी जाती है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?
0: देखिए, नवजात बच्चे, हम होम्योपैथी में 10 दिन का बच्चा हुआ और दवाई दीजिए, अब उसमें दवाइयाँ देना उचित है? बिल्कुल दिया जाता है, तो उसकी माँ साथ में रहे, तो क्योंकि वो माँ ही सब कुछ सिम्टम उसका बता सकता है कि मेरा बच्चा किस तरीके का हरकत करता है
1: जी,
0: दस्त कितनी बार किया, दस्त का कलर क्या था, खांसी किया तो किस तरीके से उसके सिम्टम आए कि सांस फूल रही थी, शरीर नीला पड़ गया, डिस्निया की कंडीशन हो जाती, निमोनिया आ गया। हमारा डॉक्टर का, जब मैंने स्टेथोस्कोप लगाया, उसको समझा, देखा, सब कुछ समझ के उसको दवाइयां दिया, क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता अपने मुंह से। छोटे बच्चों के लिए देर नहीं करना चाहिए, दस्त कई बार हो रहे हैं, एक बार हुआ तो ठीक है, बुखार तेज आ गया, या कभी कभी बुखार इंसेफ्लाइटिस एक कंडीशन होती है कि मस्तिष्क ज्वर, ये कभी अगर बच्चों को छोटे समय पर अगर वो बीमारियां हुआ, बुखार आया, अगर सही समय पर उसकी दवाइयां नहीं मिली तो बच्चों को देखते देखते अचानक उसको इतनी गंभीर रूप में ताप आ जाएगा उसके शरीर में कि वो मुंह से बड़बड़ाने लगता है, छटपटाने लगता है और गार्जियन उसमें बेचैन हो जाता है कि मेरे बेटे को क्या हो। तो कुछ समस्याएं होती हैं, उसको अभिभावक को जब डॉक्टर के पास जाए, जो लक्षण आपने जो समझा अपनी भाषा में डॉक्टर को, अच्छी भाषा में आप बताइए, डॉक्टर खुद समझेगा और आपका वो लक्षण बताना कितना गंभीर है और कितना कारगर डॉक्टर के लिए सिद्ध हो सकता है, इस बात को छुपाना नहीं चाहिए।
1: ये बताइएगा कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति और सामान्य जीवन शैली में अगर हम सुधार करते हैं तो किस तरह से हमें क्या बेहतर परिणाम उसके मिल सकते हैं?
0: देखिए, हम तो होम्योपैथी के डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथी की रही बात, हमारे लिए हर बीमारियां अपने आप में बड़ी ही सैद्धांतिक और तथ्यात्मक रूप से लक्षणों के आधार पर इसका उपचार किया जाता है और इसको बहुत ही गहन चिकित्सा के रूप में गहन करके इसकी दवाइयों का सिलेक्शन होता है। अपने श्रोताओं से जरूर कहूंगा कि होम्योपैथी दवाइयों का एक बार जरूर चुनाव करें, क्योंकि ये किसी भी रोग को दबाती नहीं है, ये उनके लक्षणों के आधार पर, उसके जो सिम्टम आप बताते हैं उनके आधार पर चिकित्सक जो है चिकित्सा करता है। जैसे आप कहेंगे टीबी की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, बीमारियों के नाम से ये होम्योपैथी नहीं जानी चाहिए, लक्षणों के आधार पर जानी जाती है।
1: जी, हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आइए अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अब समय हो गया है क्रम, उसका नाम है हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। आज हम इसमें बात करेंगे कॉन्टेक्टलेस हेल्थ टेक्नोलॉजी की। श्रोताओं, कॉन्टेक्टलेस हेल्थ टेक्नोलॉजी को सरल भाषा में समझना चाहें तो इसे संपर्क रहित स्वास्थ्य तकनीक कह सकते हैं। इसमें शरीर को छुए बिना या किसी तार या उपकरण को लगाए बिना भी दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन को मापा जा सकता है। इसके लिए मरीज के गद्दे के नीचे पतले सेंसर लगाए जाते हैं जो शरीर की बारीक हलचल पर भी नजर रखते हैं। इसके अलावा फेशियल स्कैनिंग कैमरा आपके चेहरे के रंग या त्वचा में होने वाले बदलाव से तनाव के स्तर या दिल की धड़कन को भी माप सकता है। ये टचलेस तकनीक जल्द ही सब जगह उपलब्ध होगी और आशा है इसमें सभी लोग आनंदित होंगे।

message, eh?

0: बदलते मौसम में सुरक्षित रहने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कच्ची चीजें खमकाएं, पत्ता गोभी और सलाद जैसी कच्ची सब्जियों को खाने से बचें और अच्छे से उबाल कर या पका कर खाएं, और साथ ही पानी भी बहुत सारा पीते रहिए। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आपको स्वस्थ रखेगा। तो बस अब अनुराधा पेंसे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

0: पक्षी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 1:30 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में आप सुनने जा रहे हैं अनसुईया बोरलिया से कुछ मालवी गीत। कार्यक्रम का आरंभ इस लोक भजन से।

इसी गंगा गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान था। 1:45 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में आप सुनने जा रहे हैं राम स्वरूप साकेत से चंद गजलें। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं अहमद फराज की इस गज़ल से।

और इसी गजल के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:57 होने जा रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
3: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
2: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ।
3: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
2: पानी को रखें हम हमेशा ढककर,
3: और उसको पिएं छानकर उबालकर।
2: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
3: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: आओ मिलकर करें प्रयास,
3: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी हो।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
2: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। 2 बज चुके हैं, आप सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का ये पहला नगमा आ रहा है, ए दिल है मुश्किल फिल्म से। अरिजीत सिंह ने इसे गाया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने शब्द दिए हैं और धुन तैयार की है प्रीतम ने।

ये गीत आप सुन रहे हैं शेख खुशहाल और अरिजीत सिंह का गाया हुआ। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और धुन तैयार की है। प्रीतम ने, फिल्म का नाम है एजेंट विनोद।

0: ये गीत आपने सुना एजेंट विनोद फिल्म से। श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने इसे अपनी आवाज़ें दी थी। अमिताभ भट्टाचार्य इस गीत को लिखने वाले थे और धुन तैयार की थी प्रीतम ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी अहम भूमिका निभा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति का कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: श्योपुर के बाद राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ग्वालियर पहुंची, जहां वायुसेना के विमान से ग्वालियर से दिल्ली रवाना हुई। इसके साथ ही उनका 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा संपन्न हुआ। ग्वालियर विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद भारत सिंह कुशवाहा एवं महापौर शोभा सिकरवार ने उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ

सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। भोपाल पहुंचकर श्री मुरुगन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। कल डॉक्टर मुरुगन देवास जिले की कन्नौद तहसील स्थित ग्राम डोकाकुई पहुंचेंगे। यहां सुबह वे सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी एमपी लैड के तहत स्वीकृत विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक भोपाल स्थित नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी में चल रही है। बैठक के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अपने अपने सुझाव और प्रस्तुतियां कमेटी के समक्ष रख रहे हैं। इसके बाद मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। वहीं दोपहर बाद विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। अब रुख करते हैं मौसम का। मानसून की रफ्तार धीमी होने और प्री मानसून गतिविधियों में कमी के कारण तापमान और उमस दोनों बढ़ गए हैं। राजधानी भोपाल में आज दोपहर में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, मैहर, अनूपपुर, कटनी और दमोह तथा सागर, विदिशा और अशोकनगर में तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। छिंदवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे पर सावरी पुलिस चौकी क्षेत्र में 8 मजदूरों से भरे पिकअप वाहन और बेकाबू ट्रक के बीच सीधी भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के अस्पतालों, होटलों और व्यावसायिक भवनों में निर्धारित मानदंडों और नियमों का पालन जांचने के लिए निरीक्षण दल का गठन किया गया। पन्ना जिले में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सूचनादाता प्रोत्साहन योजना लागू की गई है, जिसके तहत सही सूचना देने वाले को 1,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। आगरमालवा के सुसनेर में गीता भवन निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। और नर्मदापुरम के पचमढ़ी में लगने वाला प्रसिद्ध नागद्वारी मेला और यात्रा 7 अगस्त से 17 अगस्त नागपंचमी तक आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2 बजने जा रहे हैं। आप दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने

0: का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्षद शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज CISF के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि CISF के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री B.Batsisak के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि

0: के लिए जेजु फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आनंद बख्शी के संगीत निर्देशन में इस गीत को शब्द दिए थे आनंद, माफ कीजिएगा, आनंद बख्शी ने शब्द दिए थे और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाया था किशोर कुमार ने और फिल्म का नाम महबूब की मेहंदी। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे ये सभी दोस्त पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित एवं उनका पूरा परिवार इसी गीत को सुनना चाहता था। करूला मुरादाबाद से अगली चिट्ठी आई है अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान की, और इसी गीत को सुनना चाहते थे सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी।

अमित त्रिवेदी का गाया हुआ गीत उन्हीं के संगीत निर्देशन में बोल अमिताभ भट्टाचार्य की फिल्म का नाम ब्लैकमेल। ख्वाहिशमंद हमारे दोस्त उनके नाम इस गीत के बाद।

आपकी फरमाइश के इस गीत को सुनवाने के लिए हमारे सभी दोस्तों ने चिट्ठी लिखी थी। ये हैं दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिगारपुर से सालिक पुजारी, अमरावती महाराष्ट्र सरोज चौक से

ये गीत आप सुन रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों का गाया हुआ। अप्पू राजा फिल्म से इस गीत को हमने लिया है। प्रेम धवन ने इस गीत को शब्द दिए हैं और धुन है इलैयाराजा की। इस गीत को सुनवाने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने, संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, घंटा घर चौक खंडवा से। प्रभाकर जोंघले, आरती जोंघले ने ये चिट्ठी लिख भेजी थी गौतम नगर जिला नांदेड़ से। और कार्यक्रम के आखिरी गीत के लिए फरमाइश करता है हमारे ये सभी दोस्त, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, सुनीता, संगीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। ये चिट्ठी भी इंदौर से ही आई है, गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 से। अनिल कवचाले, नेहा फर्नीस, सीमा, सबीहा, पूजा, सुषमा और स्मिता की। इन्होंने सुनना चाहा है श्रेया घोषाल को। गीतकार है कुमार फरहान सईद ने धुन तैयार की है। आवाज है श्रेया घोषाल और फरहान सईद की। फिल्म का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड।

0: हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म के इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 2:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी अहम भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री स्टार्मर का कहना है कि वे परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुर्गन शाम को भोपाल कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। डॉक्टर मुर्गन कल देवास जिले के दौरे के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस समारोह आज भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। मानसून की रफ्तार धीमी होने और प्री मानसून गतिविधियों में कमी के कारण तापमान बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में दोपहर में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से उमस बढ़ गई है। और फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न हो उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवावाणी का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:02 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:00। कार्यक्रम आजकल कल का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:40 पर। प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुन सकते हैं 6:45 पर। ग्राम सभा का प्रसारण समय रहेगा 7:21 और सुर्खियों में इसे आप सुनेंगे रात 8:00। आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, प्रसारण समय रहेगा रात्रि 9:30 और आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे 10:30 संगीत गोस्वामी से राग यमन में ख्याल गायन। ये थी संक्षिप्त सी जानकारी उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में सांध्यकालीन सभा में सुन सकते हैं। 3:02 होने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न होती है। मीडियम वेव पर आप हमारी सभा का प्रसारण शाम 5:00 से सुन सकते हैं। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार। DTH के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। अब सुनिए लोक संगीत, इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति। कलाकार हैं अनुसुईया बोरेलिया, इनसे आप सुन सकते हैं कुछ मालवी गीत। कार्यक्रम का आरंभ इस मीरा

यह तकनीक एक बड़ा अवसर भी है। जो लोग नई तकनीकों को सीखते हैं वे भविष्य के रोजगार और नए करियर विकल्पों के लिए एक बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। आने वाले समय में AI से जुड़े कौशल कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, AI हमारी मदद कर सकता है, हमारी जगह नहीं ले सकता। इंसान की कल्पना शक्ति, नैतिक सोच और निर्णय लेने की क्षमता आज भी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए तकनीक को अपना सहायक बनाइए, उसका पूरी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ उपयोग कीजिए और इसी उम्मीद के साथ कि तकनीक हमारे जीवन को और बेहतर बनाएगी, आइए सुनते हैं आज का अगला शानदार फिल्मी गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत फिल्म आजा नटले से। स्वर हैं राहत फतेह अली खान के, गीतकार जयदीप साहनी और संगीतकार सलीम सुलेमान। दोस्तों अब समय हो गया है आज की रोजगार सूचना का। कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा SSC CGL 2026 की अधिसूचना 12,256 पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट SSG पर जारी की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 22 जून 2026 है। इस पद के लिए आयु सीमा 18 से 32 वर्ष के बीच है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म बार बार देखो से। स्वर थे अमर अर्शी, बादशाह और नेहा कक्कर के। गीतकार अमरिक सिंह कुमार और संगीतकार जसलीन रॉय। और दोस्तों आपसे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला, वक्त है आपसे विदा लेने का। और दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और दीजिए आपकी रेडियो होस्ट वंशिका श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
6: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
7: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
5: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
6: आकाशवाणी है ना,
8: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
6: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
5: शाम सुहानी हो,
6: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
5: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
6: सफर में
5: आपके साथ
6: आकाशवाणी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आतिफ असलम की आवाज में फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी का बहुत ही खूबसूरत गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं और प्रीतम का संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म प्रेम रतन धन पायो से। आवाजें हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की। बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और संगीत प्रीतम का, और आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादाब और फारिकी

अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादाब फरीदी और अल्तमाश फरीदी की आवाज़ में इस खूबसूरत गीत के साथ आइए सुनते हैं अगला गीत। सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और स्वानंद किरकिरे की आवाज़ में, लगा चुनरी में दाग फिल्म से। इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सजाया है शांतनु मोहित्रा ने।

सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, स्वानंद किरकिरे और प्रणव विश्वास की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म लागा चुनरी में दाग का बहुत ही खूबसूरत गीत, जिसे संगीत से सजाया था शांतनु मोइत्रा ने और बोल थी स्वानंद किरकिरे के। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

İş yer dikha, pokhran dikha. Miss World dikhi, World Cup dikha. Chandrayaan dikha, Insat dikha. Nayi kahaniyon ne naya Bharat likha. कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा।

कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है।

0: Gen Z भी है, है also Gen Old नहीं पुरानी. Best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है. केंद्र सरकार ने दिशा कार्यक्रम न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नए समाधानों की तलाश के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है. ये कार्यक्रम इस वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च 2031 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए नए रूप में लागू किया जाएगा. केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात की. 2 दिवसीय अपने प्रवास के दौरान श्री मुरुगन कल देवास जिले के डोकाकुई में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे. प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर 23 जून से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय निकायों के महापौर तथा नगर पालिका अध्यक्ष को वीसी के माध्यम से संबोधित करते हुए ये निर्देश दिए. उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर में भस्म आरती के लिए आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है. अब श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए 3 माह में सिर्फ 1 बार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे. और फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा. ये मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा. आप सुन रहे थे इस घंटे की

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से दियोशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदियां बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे

0: से वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था, वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था, वो जहां चाहता वहां जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है,

अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आनंद फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। आवाज है मुकेश की और योगेश का लिखा हुआ ये गीत है। धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

आनंद आश्रम, आइए सुनते इस फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है श्यामल मित्रा ने।

नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है योग। केवल कसरत नहीं, नए भारत के आत्मबल और सशक्त अर्थव्यवस्था का आधार। आलेख श्री जगदीश देवड़ा का है। आप मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री हैं। वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सदियों पहले भारत की पावन भूमि से उपजा योग आज वैश्विक चेतना का सबसे बड़ा संभाग बन चुका है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी, तब वह केवल एक पद्धति का सम्मान नहीं था, बल्कि भारत की प्राचीन वसुधैव कुटुंबकम की भावना को वैश्विक स्तर पर स्वीकार करना था। आज योग धर्म, जाति, भूगोल और सीमाओं के बंधनों को तोड़कर पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरो रहा है। लेकिन 21वीं सदी के इस दौर में हमें योग को सिर्फ शारीरिक व्यायाम या कुछ आसनों तक सीमित रखने की भूल नहीं करनी चाहिए। योग एक पूर्ण जीवन दर्शन है जो व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति को तो सुनिश्चित करता ही है, इसके साथ ही राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास का अदृश्य इंजन भी है। एक अर्थशास्त्री या वित्त मंत्री के दृष्टिकोण से जब मैं योग को देखता हूं तो मुझे इसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद, GDP और नागरिकों की क्रय शक्ति को मजबूत करने का एक बड़ा माध्यम दिखाई देता है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में आज भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी बीमारी पर अपनी जेब से होने वाला खर्च परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ है। योग मुख्य रूप से प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रणाली है। यदि देश का नागरिक हर दिन सिर्फ 30 मिनट योग को देता है तो वह जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन और मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस से दूर रहता है। स्वस्थ नागरिक का सीधा अर्थ है अस्पतालों और दवाओं पर होने वाले खर्च में कमी। यही बची हुई पूंजी परिवारों की बचत बनती है जो आगे चलकर देश के वित्तीय चक्र को गति देती है। भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी इस युवा आबादी का लाभ हमें तभी मिल सकता है जब यह युवा कार्यबल न केवल डिग्रीधारी हो बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी ऊर्जावान हो। कॉरपोरेट जगत से लेकर सरकारी विभागों तक बर्नआउट और मानसिक तनाव कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। योग और प्राणायाम व्यक्ति की एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जब कार्यबल की कार्यक्षमता बढ़ती है तो उसका सीधा सकारात्मक असर उद्योगों के उत्पादन और अंततः देश की आर्थिक विकास दर पर पड़ता है। योग भारत के युवाओं को भीतर से सशक्त कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार योग को केवल आयोजनों तक सीमित न रखकर इसे अपनी विकास नीतियों का हिस्सा बना रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियां तैयार की हैं। हमारे अमरकंटक, पचमढ़ी और उज्जैन जैसे सांस्कृतिक केंद्र आज न केवल आध्यात्म बल्कि योग और आयुर्वेद के बड़े हब के रूप में उभर रहे हैं। हमने स्कूली शिक्षा में खेल और योग को प्राथमिकता दी है ताकि आने वाली पीढ़ी बचपन से ही इस जीवन शैली को अपनाए। इसके अलावा हमारे प्रदेश का आयुष विभाग लगातार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योग शिविरों के माध्यम से जन जन को निरोगी बनाने के मिशन में जुटा हुआ है। आज योग ने दुनिया भर में एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है जिसे वेलनेस इकोनॉमी कहा जा सकता है। योग मैट और परिधानों से लेकर डिजिटल योग एप्लीकेशन और अंतर्राष्ट्रीय वेलनेस रिट्रीट का बाजार अरबों डॉलर का हो चुका है। भारत इस वैश्विक योग अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। हमारे देश के युवा आज दुनिया भर में योग विद्या के ट्रेनर और थेरेपिस्ट के रूप में रोजगार पा रहे हैं। यह लोकल टू ग्लोबल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। योग हमें जोड़ना सिखाता है, स्वयं को प्रकृति से, व्यक्ति को समाज से और नागरिक को राष्ट्र से। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में विकसित भारत के उस सपने को पूरा करने का मार्ग है जहां नागरिक केवल भौतिक रूप से समृद्ध न हो बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी सुदृढ़ हो। तो आइए हम सब योग को साल में सिर्फ एक दिन का उत्सव न मानकर अपने दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब एक एक नागरिक स्वस्थ और संकल्पवान होगा तभी एक समर्थ, सक्षम और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। आजकल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल, विषय था योग केवल कसरत नहीं, नए भारत के आत्मबल और सशक्त अर्थव्यवस्था का आधार। आलेख श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार दर्शन।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं शेख महजबी अलमास। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस सप्ताह हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 सालों के दौरान उनके द्वारा आम नागरिक के लिए चलाई महत्वपूर्ण योजनाओं पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी महत्वपूर्ण पहलों से कैसे आम नागरिक के जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। पहले हम बात करेंगे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि
1: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
0: अब हम बात करेंगे उन हितग्राहियों की जिनके जीवन में केंद्र सरकार की योजनाओं ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की हितग्राही एकता टकरानी बताती हैं कि
2: मेरा नाम एकता टकरानी है। मैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की हितकारी हूं और जिसके अंदर मुझे 6000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। से मैंने अपना इलाज, जो भी जांचें थी उनको सही समय पर कराया, अपने बच्चे का पालन पोषण किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
0: प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने वाले मिश्री लाल चौधरी बताते हैं,
3: मुझे जनधन योजना में खाता खुलवाने का प्रथम लाभ मिला। उस योजना से मेरा अन्य किसी भी प्रकार का पैसा सीधा मेरे खाते में आता है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है जबलपुर जिले से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेश है जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी की यह रिपोर्ट।
4: संस्कारधानी का ऐतिहासिक गैरिसन ग्राउंड आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगमय नजर आया। महामहिम राष्ट्रपति के मुख्य आतिथ्य में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मां नर्मदा की पावन भूमि से देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि
5: मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज हम यहां भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिया। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के

0: स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
1: योग बढ़ती आयु से भी व्यक्ति के सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की सहायक होते हैं,
0: साथ ही मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर।

0: यूके के मुख्य आतिथ्य में विश्व योग दिवस पर सामूहिक योग का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला प्रशासन, आयुष विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री उइके ने कहा कि योग केवल व्यायाम तक सीमित नहीं है, यह हमें आध्यात्मिक और अनुशासित रूप से समृद्ध बनाता है। आयोजन की विस्तार से जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर शांता स्वामी भार्गव ने आकाशवाणी को बताया।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत इंदौर जिले के जिला स्तरीय कार्यक्रम बास्केटबॉल स्टेडियम में किया गया। यहाँ पर 10 से 12 स्कूलों के बच्चे, जिनकी संख्या लगभग 250 से 300 थी, कार्यक्रम में शामिल हुए। इंदौर जिले में विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया और जो इंदौर जिले का मुख्य कार्यक्रम था, इसमें 500 से अधिक लोग सहभागी बने। विद्यालय में जो योग करने वाले बच्चे थे, उनका ऑनलाइन पंजीयन भी किया गया, जिसकी संख्या 1200 के
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राध्यापक और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश भार्गव ने योग को स्वस्थ जीवन का गुरु मंत्र बताया।
2: योग भारतवर्ष की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा एवं चिकित्सा पद्धति है, जिसको पूरे विश्व में आत्मसात किया है। योग करने से शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। योग जीवन का आवश्यक अंग है। प्रतिदिन प्रातः 30 मिनट योग के लिए अवश्य निकालना चाहिए। योग का प्रमुख उद्देश्य है कि मनुष्य बीमार ही न हो। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, क्योंकि देश का पैसा अनावश्यक रूप से अस्पताल बनाने, इंस्ट्रूमेंट खरीदने, दवाइयां खरीदने में खर्च होने से बचता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को योग की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि वह बीमार ना हो।
0: इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर में गोपुर चौराहे पर 10,000 से ज्यादा साधकों ने 3 मिनट से ज्यादा सामूहिक भ्रामरी प्राणायाम कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इस आयोजन में इंदौर की 70 से अधिक योग संस्थाएं, खेल संगठन, 150 से अधिक सामाजिक संस्थाएं और समाज के विभिन्न वर्ग के लोग शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर खंडवा जिले से है, जहां प्रधानमंत्री जनधन योजना जिले में वित्तीय सशक्तिकरण का मजबूत आधार बनकर उभरी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरा लाल लोंगरे।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना और उससे जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं खंडवा जिले में वित्तीय सशक्तिकरण का मजबूत आधार बन रही है। जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक श्री गणेश तायकर ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जिले में अब तक कुल 6,95,213 लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत करीब 2,02,236 हितग्राही, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6,02,338 हितग्राही तथा अटल पेंशन योजना के तहत 82,599 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। एलडीएम श्री तायकर ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक बैंकिंग सेवाओं, बीमा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ रहे हैं। जनधन खातों के माध्यम से विभिन्न शासकीय योजनाओं की राशि सीधे हितग्राही के खाते में पहुँच रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना तथा उससे संबंध बीमा और पेंशन योजनाएं समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
3: हमारी अगली खबर खरगोन से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। जिले भर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रमों में करीब 1,00,000 से अधिक स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं खरगोन से हमारे संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
5: खरगोन जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। जिले भर में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रमों में करीब 1,00,000 से अधिक स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। जिले में मुख्य कार्यक्रम खरगोन की अनाज मंडी में आयोजित हुआ, जहाँ प्रदेश के पूर्व कृषि राज्य मंत्री एवं खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर भव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री पाटीदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर योग ने पिछले वर्षों में वैश्विक पहचान बनाई है और आज दुनिया भर के लोग इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। योग दिवस के अवसर पर जिले भर में स्वस्थ, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली का संदेश दिया गया। कार्यक्रमों के माध्यम से फिट इंडिया और निरोगी भारत के संकल्प को भी दोहराया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रदेश के पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार।

0: आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया में ये योग का कार्यक्रम हुआ है। उसी कड़ी में हमारे खरगोन जिले में लगभग हर ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी ये आयोजन हुआ योग का, और उसमें कम से कम 1 लाख से भी ऊपर जनता ने, बच्चों ने, सबने मिलकर के इसमें भाग लिया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और उनके संकल्प को लेकर के आज पूरे विश्व में योग हो रहा है। इस अवसर पर मैं आज जिन लोगों ने भी इसमें योग में भाग लिया सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, वो स्वस्थ रहे।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम चलते हैं मंदसौर जिले की तरफ, जहां प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी और छोटे रोजगार करने वाले व्यापारियों को बिना गारंटी आसान ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना से लाभान्वित व्यापारी सरकार की इस पहल से काफी खुश और संतुष्ट हैं। पेश है मंदसौर से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी और छोटे स्वरोजगार करने वाले व्यापारियों को बिना गारंटी आसान ऋण उपलब्ध कराना है। मंदसौर जिले में इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। जिले में 4000 हितग्राहियों के लक्ष्य को पार करते हुए अब तक 5000 से अधिक व्यापारियों को इस योजना का लाभ दिया है। इनमें लगभग 4000 व्यापारियों को 15 से 20 हजार रूपए तक का ऋण और करीब 1000 व्यापारियों को 50 हजार रूपए तक का ऋण प्रदान किया गया है। फल फ्रूट व्यापारी मोहन लाल ने बताया कि
4: मैंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से पहले 10 हजार रूपए का लोन लिया था, फिर उसको पूरा करने के बाद मुझे 25 हजार का लोन मिला, फिर उसके बाद मुझे 50 हजार का लोन मिला। ये प्रधानमंत्री जी की जो स्वनिधि योजना है हम ठेले वालों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है और हमें बहुत इस योजना से हमें बहुत फायदा मिला है।
3: वहीं पीएम स्वनिधि शाखा प्रबंधक अजय शर्मा ने बताया कि
5: हमारे द्वारा पीएम स्वनिधि योजना का संचालन कोरोना काल से लगातार किया जा रहा है। इसके दौरान हम वार्डों में शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर के दौरान हमारे द्वारा अधिक से अधिक योजना में जो मुख्य रूप से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है उसकी हमारे द्वारा जानकारी दी जा रही है। उसी की वजह से अधिक संख्या में हितग्राही हमसे जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे द्वारा डिजिटल इंडिया का जो QR कोड होता है ताकि हितग्राही डिजिटल पेमेंट कर सके वो भी हमारे द्वारा किए जा रहे हैं।
3: आर्थिक सहायता से छोटे व्यापारियों को अपना व्यापार बढ़ाने और आय में वृद्धि करने का अवसर मिल रहा है। योजना का लाभ पा चुके व्यापारी सरकार की इस पहल से काफी खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।
2: हमारी अगली खबर है नीमच जिले से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लायन डेन में जिला स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नीमच से हमारे संवाददाता दिनेश प्रजापति।
6: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को नीमच के लायन डेन में जिला स्तरीय भव्य योग कार्यक्रम आयोजित। जिला प्रशासन और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये कार्यक्रम इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग पर आधारित होगा। कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, योग संस्थाओं, NCC, NSS, पुलिस बल तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकों की सहभागिता। आकाशवाणी प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नीमच से दिनेश प्रजापति।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर का पार्टी में स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। दमकल कर्मी, पुलिस कर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और निकासी अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: मुख्यमंत्री अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौट आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस भयानक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बातार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से तेसेग बटमुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADAK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SNSC के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है, समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले हमारी आज की सांधिकालीन सभा के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आप सुनिएगा वृद्धावस्था में योग फॉर हेल्दी एजिंग विषय पर विशेषज्ञों एवं योगाचार्यों से बातचीत पर ओबी आधारित कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा होगी। 8:15 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। पब्लिक स्पीक 9:30 पर हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में 10:30 पर सुनेगा संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन, राग होगा यमन। और अब बारी है हमारे कल के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में कल सुबह 7:20 पर प्रस्तुत करेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा होगा। 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेगा रमेश इंदुबासु की गाए भजन और गीत। 9:30 पर शब्द सागर कार्यक्रम में आप सुनेगा ऋषिकांत सक्सेना की वार्ता, भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और सुभाष जाटव का काव्य पाठ। हर रोज की तरह जिले की चिट्ठी होगी सुबह 10 बजे। 10:05 पर पेश करेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर सुनेगा सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन, ताल होगा एक ताल। और इसी प्रोग्राम में रात्रि 10:30 पर सुनेगा तबले पर 3 ताल। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में 11 बजे आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे दिन में 12 बजे और 2:30 पर। 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनेगा धारावाहिक भुवन मोहिनी का 5वां भाग। 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम। 1:30 पर सुनेगा लोक संगीत का कार्यक्रम। दिन में 1:45 पर पेश करेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति होंगे। शाम 5 बजे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का दिल्ली से सजीव प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:33 पर रात्रि 8:15 पर और 10 बजे आनंद ले सकते हैं आप फिल्म संगीत का। 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। शाम 6:30 पर आप सुन सकते हैं चित्रपट संगीत। 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में हम आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता, सतत कृषि विकास में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की भूमिका, जानकारी देंगी डॉक्टर मीना यादव। रात्रि 8 बजे होगा कार्यक्रम सुर्खियों में और रात्रि 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम आईना में आप सुनेगा गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम आबशारी गजल। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बता दें कि कल शाम 5 बजे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का दिल्ली से सजीव प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा।

0: सुविधा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो।
3: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
3: अच्छा
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कूनो में चीता मित्रों से किया संवाद, चीता संरक्षण की ली जानकारी। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कल से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में विशेष पखवाड़े का होगा आयोजन। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती दर्शन के लिए अब एक मोबाइल नंबर से 3 महीने में सिर्फ एक बार मिलेगी अनुमति, नई व्यवस्था आज से लागू। और प्रदेश में लंबा हुआ मानसून का इंतजार, 25 जून के बाद इसके राज्य में प्रवेश के आसार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 2 दिवसीय कूनो नेशनल पार्क के प्रवास के दौरान आज चीता मित्रों से संवाद कर चीता संरक्षण के प्रयासों की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने चीता मित्रों से चर्चा करते हुए उनके द्वारा चीतों की सुरक्षा और आमजन के बीच चीतों के व्यवहार को लेकर किए जा रहे जन जागरूकता के प्रयासों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। श्रीमती मुर्मू ने सभी चीता मित्रों से 1-to-1 चर्चा कर परियोजना के लिए उनके द्वारा मानसेवी रूप से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: राष्ट्रपति इसके बाद कूनो से ग्वालियर पहुंची, जहां से वे अपना 5 दिवसीय मध्य प्रदेश का दौरा संपन्न कर दिल्ली के लिए रवाना हुई। प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि 23 जून से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय निकायों के महापौर तथा नगरपालिका अध्यक्ष को मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से संबोधित करते हुए इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने युवाओं को नेतृत्व, शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रेरित किया। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। पखवाड़े के दौरान युवा सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिता और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इससे नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों द्वारा मार्गों और उद्यानों का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जा सकता है। इस प्रकार की पहल के लिए सभी प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक रूप से किया जाए तथा सक्षम स्तर से सभी स्वीकृतियां अवश्य ली जाएं। केंद्रीय सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल के प्रशासन अकादमी में समान नागरिक

अध्यक्षता यूसीसी की राज्य स्तरीय समिति की अंतिम दौर की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई दिल्ली में एक अन्य आवश्यक मीटिंग होने के कारण व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकी। उनकी अनुपस्थिति में समिति के अन्य सदस्य शत्रुघ्न सिंह, बुद्ध सिंह, गोपाल शर्मा, अनूप नायर और शोभा पैठणकर ने समिति के सदस्य सचिव अजय कटेसरिया के साथ मिलकर अलग अलग चार सत्रों में विभिन्न पक्षों के साथ महत्वपूर्ण सुझाव लिए। बैठक में देश की छह राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस महत्वपूर्ण चर्चा में केवल भाजपा और सीपीएम के नेता ही शामिल होने पहुंचे, जबकि कांग्रेस सहित अन्य दल बैठक से नदारद रहे। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर में भस्म आरती के लिए आज से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब श्रद्धालु बाबा महाकाल की भस्म आरती की अनुमति के लिए 3 माह में सिर्फ एक बार अपने मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकेंगे। ये व्यवस्था प्रोटोकॉल से आने वाले ऐसे मोबाइल नंबरों पर भी लागू होगी जिनसे हर माह भस्म आरती की अनुमति ली जा रही है। हालांकि महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि यह व्यवस्था पहले से ही लागू है, अब इसे और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि आम श्रद्धालुओं को भी आसानी से दर्शन का मौका मिले। अब एक ही मोबाइल नंबर का बार बार उपयोग नहीं हो सकेगा। इस नियम से उन आम भक्तों को फायदा होगा जो महीनों तक ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा पाते थे। मंदिर समिति का दावा है कि इससे भस्म आरती में पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल आदिरंग शिल्पकार महोत्सव 2026 के समापन समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आचारपुरा स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री महोत्सव के दौरान जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित उत्पादों एवं डिजाइन हस्तक्षेपों की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही शिल्पकारों, डिजाइन विशेषज्ञों और प्रतिभागियों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समारोह में जनजातीय कला, शिल्प और आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों तथा डिजाइन आधारित नवाचारों की जानकारी दी जाएगी। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिक ई और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसका उपयोग करके करीब 40,00,000 लोगों ने अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं और करीब 8.5 लोगों ने अपने पते अपडेट करने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है। इस एप्लीकेशन के जरिए एक क्लिक में लॉक या अनलॉक करना, उपस्थिति के साक्ष्य के लिए चेहरा प्रमाणित करना, QR बेस्ड परिचय पत्र और विजिटिंग कार्ड जैसी सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं। 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में डॉक्टर बीना उन्नीकृष्णन की डॉक्यूमेंट्री Y64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन का प्रदर्शन किया गया। संस्कृति विभाग के सहयोग से निर्मित यह डॉक्यूमेंट्री अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पहली बार प्रदर्शित की गई। यह फिल्म प्रदेश के मितावली स्थित मंदिर पर बनी है। अपर मुख्य सचिव संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश के मितावली, मुरैना, जबलपुर और खजुराहो के 64 योगिनी मंदिर हमारी पुरातन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मितावली का 64 योगिनी मंदिर, जिसने भारत की पुरानी संसद भवन की वास्तुकला को प्रेरित किया, आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी शामिल है। Y64 विस्पर्स ऑफ द अनसीन जैसी परियोजना इस अद्वितीय विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून तय समय से करीब 7 दिन पीछे चल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून की एंट्री के लिए अभी 4 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। 23 जून तक मानसून के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ओर बढ़ने की संभावना है, जबकि 25 जून के बाद इसके मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के आसार हैं। जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया कि शहर में आज सुबह आधे घंटे से अधिक अच्छी बारिश हुई, जिससे वातावरण में ठंडक आई और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिली। इस बीच प्रदेश के 21 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश की गतिविधियां आज भी जारी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल की ITI प्रभात पटनम में वर्ष 2026 की प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। झाबुआ कलेक्टर ने शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए कन्या माध्यमिक शाला पिटोल बेड़ी के सहायक शिक्षकों और प्रधान पाठक को सम्मानित किया। आज सीहोर जिले के बमूलिया, मुगाली, पांगरा, बागेर और नौगांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को NHRC दिल्ली द्वारा NQAS प्रमाणित किया गया। शिवपुरी में PM जनमन आवास योजना में लापरवाही को लेकर ग्राम पंचायत करई के सचिव को निलंबित किया गया। गुना में युवा संगम अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 24 जून को शासकीय महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज में किया जाएगा। और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खंडवा के द्वारा प्लंबिंग एवं सैनिटरी वर्क का 6 दिवसीय प्रशिक्षण 10 जुलाई से आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कूनो में चीता मित्रों से किया संवाद, चीता संरक्षण के लिए जानकारी। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कल से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में विशेष पखवाड़े का होगा आयोजन। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती दर्शन के लिए अब एक मोबाइल नंबर से 3 महीने में सिर्फ एक बार मिलेगी अनुमति। नई व्यवस्था आज से लागू। और प्रदेश में लंबा हुआ मानसून का इंतजार, 25 जून के बाद इसके
राज्य में प्रवेश

चौपाल सुने वाले सबे भैया बहनी हरे इनका हमार सुबेंद्र भाई केर राम राम भैया बहनी हरे। देखी अधिक मास पूर हो गया या वो पुन के जेठ महीना के दूसर पाक शुरू हो गया है। इन से एह शुद्ध जेठ माँ पुन के लगन पात शुरू हो गए हैं। एके बाद अब आषाढ़ है आए लागे का है। मनई का अब अपने आगे के तर तैयारी कई लेख चाही। जो पहले से मनई अपन तैयारी बनाए रहा है तब फिर जैसने तोरा मिला तब मनई बोय बराही लेत है। पर जो पहले से तैयारी ना भय तब फिर मनई का मिला तोरो चला जात है तब फिर पछतावे हाथे लागत है। ऐसे देखिए अब ऐसा ही तब पुन के अब देखी लगन पात शुरू हैं तब मनई का ओहू कहीं दिखाइन का है। कहे के मनई समाज में रहत है तो वही तो निवाहिन परत है। जो आज हम कोहू के न जाब तो फिर काल ही को हमरे काहे कही। जब द्वारे में चार जने इकट्ठा हो था तब वह द्वार नीक लागत है। ऐसे आपन खेती किसानी देखत केन समाजों का देख के चाही। नहीं तो फिर वह उखाने का सुजात है के धोई नहवाई गाड़र चहला में पड़ गए। तो भाई करो हल्ले ही हम यह उखान कह दीन है काहे के आज वाय सम्मार। तो आज के दिन मने ही उखान कहते है पर अपना पंचन का यह उखान के मतलब बतावे का है। तब बताओ जो उखान का निकाह के न सुन पायन होब तो हम उखान का पुन के दोहराए देब। तो आज तो अपना पंचे वही लिख ली देखी। तो आज के उखान है धोई नहबाई गाड़र चहला में परी गए। तई है आए आज के रुखान अब अपना पंचे एकर मतलब लिख के भेजब। भई करो एक बात और कहा वह या कि आज अपने देश के कश्मीर राज्य में मनाए जाए वाले एक ठे उत्सव केर दिन आए। यह उत्सव या के मेला मध्य कश्मीर के गांदरबल जिला के तुलमुला या तुलमुल्ला गांव में आयोजित होत है। यह कश्मीरी पंडितन के रिक्ठे सबसे बड़ा त्यौहार होत है जौन हर साल जेठ महीना के अष्टमी का माता रागन्या देवी का समर्पित होत है। खीर भवानी या के राग्या देवी मंदिर भवानी देवी के रिक्ठे प्रसिद्ध मंदिर आए है।

जैसन अबे बताएन के जम्मू और कश्मीर के गांधरवल जिला मा तुलमुला गांव मा एक ठे पवित्र पानी के चश्मा के ऊपर स्थित है। यह श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। माता क्षीर भवानी केर पूजा लगभग सबे कश्मीरी हिंदू करत करा हैं। पारंपरिक रूप से बसंत ऋतु मा मंदिर मा खीर चढ़ावा जात रहा है, एहिन से एकर एकठे नाम खीर भवानी पड़ा। इनका महारज्ञा देवी के नामों से जाना जात है। बेकरो मान्यता है कि कौनो प्राकृतिक आपदा के भविष्यवाणी के तौर पर आपदा के आवय से पहले मंदिर के कुंड केर पानी काला पर जात है, तो ऐसन माता देवी केर महिमा है। माता देवी अपने कुंड के पानी के माध्यम से प्राकृतिक आपदन के संकेत दे देती हैं, या बहुत बड़ी बात यह है। भई करो जब कहो ऐसन बात आ जाती करती हैं तो मनई केर श्रद्धा अपने आपय बन जात करती।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

वेकरो देखी जैसन पहले चर्चा आई के हिंसाई तब लगन हायो चली रही है, त ऐसने में फिर गान तान के महात्म तो होते हैं।

0: अबे मने सुनत रहन सुहाग, जौने का गावत रही संध्या पाठक। भई करो देखी हम पंचे आहिन किसान, ओ किसानिन किसान केर उद्यम रोजगार आए। यहीं से मनई का मेर मेर के खेती किसानी केर जन बही हो के चाही। ओहिन के हिसाब से अपने यह चौपाल कार्यक्रम मा ऐसा मेर मेर के जन वही आवत रहती हैं, जौने का सुन के मनई जानकार बन सकत है। पर जब वही ध्यान से सुना जाए तो अजवो कुछ ऐसा नई जनवही अपने कार्यक्रम में देन जा रही है। तो आज के जनवही के विषय है शकरकंद की खेती। यह विषय में जनवही दे रहे हैं डॉक्टर जगदीश सिंह और अपना से बतकहाँ चला रहे हैं विपिन भाई। तो सुनी यह भेंट बतकहाँ।
1: किसान मेरा भाइयों राम राम। हम अक्सर आपके लाभ की बात लेके आते हैं, इस प्रकार आज भी नकदी फसल की बात है जो कि शकरकंद है। चलिए शकरकंद की लाभकारी खेती के बारे में बातचीत करते हैं डॉक्टर जगदीश सिंह साहब से, जो कि प्राध्यापक

0: व्यापक हैं कृषि महाविद्यालय रीवा से। तो सिंह साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। शकरकंद की खेती जो हमारे किसान भाइयों को लाभ दे सकती है, उसमें सबसे पहली बात आपसे जानना चाहेंगे, क्या रीवा के लिए भूमि उचित है?
1: रेतीली मिट्टी होना चाहिए और ऊपर में यदि परत रेतीली हो आप, और दूसरा जो भारी भूमि उसके नीचे है तो भी उपयुक्त होते थे
0: जी।
1: और इसका जो सामान्य पीएच होता है 5.8 से 6.5 ये होना चाहिए। जल निथार की सुविधा होनी चाहिए, मतलब पानी नहीं भरना चाहिए। देसी हल से या कल्टीवेटर से जुताई करें, गहरी जुताई कभी ना करें।
0: अच्छा।
1: गहरी जुताई करने से इसके जो कंद हैं वो लंबे हो जाते हैं और पतले पड़ जाते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि ज्यादा जुताई न करें, 15 से 20 सेंटीमीटर की जुताई होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
0: हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रजातियां आपसे जानना चाहेंगे शकरकंद।
1: इसको अपना लाल, सफेद और सुनहली रंग की जातियां होती हैं, और इसको हम लाल रंग की जातियां हैं जिसमें पूसा लाल है, जो लगभग 120 दिन में तैयार हो जाती है, भंडारण के लिए बहुत अच्छी है। दूसरी जाति है पूसा सफेद, मध्यम आकार के होते हैं और उसकी उपज लगभग 235 से 275 कुंटल एक हेक्टर में हो जाती है। पूसा सुनहली, सुनहला पीला रंग का छिलका होता है और इसमें कैरोटीन बहुत ज्यादा होता है। और इसके अलावा बहुत अच्छी जाति है जो जवाहर शकरकंद 145, इसका तांबे का आकार का जो छिलका है और इसका गूदा संतरे रंग का होता है, और इसमें घुन जो है, बीबल जो रोग है वो कम आता है। इसका उपज भी बहुत अच्छा है, 235 या 250 कुंटल पर हेक्टर होती है।
0: जी जी जी।
1: दूसरी जाति है राजेंद्र शकरकंद, जो पटना की है, जो बेलनाकार होती है, दुधिया सफेद रंग का गूदा होता है।
0: अच्छा।
1: और इसमें बीबल का रोग जो घुन लगता है वो नहीं लगता, कम है, और ये थोड़ा सा कम दिनों में तैयार होती है, 90 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, और इसकी उपज भी लगभग अच्छा होता है, 250 कुंटल पर हेक्टर होती है।
0: तो अब इसमें चूंकि ये शकरकंद है, काफी इसमें मिठास होती है, तो इसके लिए खाद और उर्वरक की मात्रा भी अधिक देनी होगी।
1: जी जी। सामान्य भूमि के लिए 10 से 15 टन एक हेक्टर में गोबर की खाद डालना चाहिए, और लगभग 50 से 70 किलो नत्रियन, 40 से 60 किलो स्पोर, और लगभग 60 से 100 किलोग्राम पोटैश पर हेक्टर देना चाहिए। नत्रियन की आधी मात्रा और स्पोर और पोटैश की पूरी मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय ही देना चाहिए, और नत्रियन की आधी मात्रा जो होती है लगभग 70 दिन बाद उसको देना चाहिए, गुड़ाई के रूप में टॉप ड्रेसिंग कहते हैं उसको देना चाहिए। इसमें नत्रियन ज्यादा देते हैं किसान भाई, तो ये जरूरी है कि इसमें बढ़वार ज्यादा होती है और उपज प्रभावित हो जाती है।
0: बीज की मात्रा और बोने का समय कितना रखें?
1: इसको हम बेलों के द्वारा या लताओं के द्वारा लगाते हैं, लगभग 40 से 50,000 टुकड़े की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसको कहें तो 6 से 7 कुंटल टुकड़ों की जरूरत होती है। इसकी रोपाई का समय होता है जून से जुलाई का।
0: जो बेल लगाते हैं,
1: बेल लगाएं जैसे बरसात होना शुरू हो जाए तब से लगा के और जुलाई तक, और दूसरा समय होता है सितंबर अक्टूबर में भी लगा सकते हैं किसान भाई,
0: मतलब अभी समय उचित है,
1: बिल्कुल अच्छा है। और टुकड़ों की रोपाई के पहले बोरो मिश्रण बना के उसको डुबा लेना चाहिए।
0: अच्छा।
1: और इसके साथ एक क्लोरोफाइल भास होता है, दवाई होती है कीटनाशक, उसको भी डुबा लें हम, तो इसमें जो कीड़ा बीमारी लगी है उसमें वो मर जाते हैं कीड़ा।
0: जी, जी, जी।
1: और इसको हमेशा मेड़ पे लगाना चाहिए, 15 से 20 सेंटीमीटर मेड़ बना लें, उसमें ये कंदों को लगाना चाहिए, और लगभग इसकी दूरी हमें 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार और 25 से 30 सेंटीमीटर लता से लता की दूरी होनी चाहिए। जो लता होती है इसमें 4 से 6 गांठें होती हैं।
0: अच्छा,
1: उनको भी जरूरी है कि आधी गांठे मीन्स 2 से 3 गांठे ऊपर रहें और 2 से 3 गांठे जमीन के अंदर रहें।
0: अच्छा।
1: समतल भूमि में न लगाएं क्योंकि पानी भरता है तो उसमें सड़न ज्यादा
0: हो जाएगी। इसमें सिंचाई की कितनी जरूरत पड़ेगी और साथ साथ जो पानी भर जाता है जिसे जल निकास कहते हैं, उसको कैसे करना?
1: तो बरसात होती है तो अच्छा है, यदि नहीं होती तो अपन अभी यदि सिंचाई का साधन है उसमें लगभग 10 से 15 दिन में यदि सिंचाई करें तो उपयुक्त हो जाता है। जल निथार होना चाहिए, पानी नहीं भरना चाहिए, नहीं तो जो बेलें हैं वो सूख जाती हैं।
0: अब इसमें चूंकि बरसात का मौसम है तो खरपतवार भी आएंगे
1: जी, इनको हमेशा निराई गुड़ाई के समय करना चाहिए। जब ये कंद बढ़ने लगते हैं, शकरकंद लग जाता है तो आपस में मिलने तक उसमें बहुत सारे बीट्स या खरपतवार आते हैं, लेकिन जब 25 से 30 दिन हो जाते हैं और ऊंचाई भी उतनी हो जाती है तब फिर उसमें खरपतवार ज्यादा नहीं आते। जब दोतई शाखा आती है, सेकेंडरी ब्रांच आ जाती हैं, उनको हम निकालते रहें, अननेसेसरी तो कंद की मात्रा कम उत्पादन देती है,
0: छोटे तो हो जाते हैं। अब व्याधियों में खरपतवार आपने बता दिया है, अब बचते हैं कीट और रोग।
1: घुन जिसको बेबल कहते हैं, ये कीड़ा लगता है, ये एक नीली चीटी की तरह कीड़ा होता है और ये जड़ तना पत्तियों सभी में छेद करके पौधों को नुकसान पहुंचाता है। जो शाखाएं जहां से हम मदर प्लांट्स या मात्र पौधे से लें वो इससे प्रभावित ना होने चाहिए। इसके लिए क्लोरपाइरीफास एक कीटनाशक दवाई आती है, उसको 5 से 10 मिनट तक दुटवा के वो जो
0: शुरुआत में बताया था,
1: यदि नहीं कर पाते हैं तो फोरेट नाम की दवाई आती है, तो ये 10 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से उसका भरकाव करके फिर लगाएं। दूसरा कार्बोरिल, तो इसको 1.5 ग्राम पर या मैलाथियन का छिड़काव करें तो ये कीड़ा नष्ट हो जाता है। दूसरा कीड़ा है बिहार खैरी कैटरपिलर, एक बालदार कीड़ा होता है, पत्तियों में जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल है उसको चूस कर और पूरी पत्तियों को खा जाता है, केवल नसें बचती हैं। तो इसके रोकथाम के लिए अंडों को या चीड़ों को यदि हाथ से नष्ट कर देते हैं या कार्बोरी से अपन कर सकते हैं, क्लोरोफायरबास से भी कर सकते हैं।
0: अब डॉक्टर साहब आखिरी जो इसकी व्याधि बचती है वो रोग
1: जी, इसमें रोग में एक पीला पत्ती का धब्बा फफूंद जनित बीमारी है, इसकी पत्तियों में गोल भूरे रंग के धब्बे होते हैं। जब रोग दिखाई दे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदी नाशक है या मैनकोजेब
0: जी
1: ये दवाई है, 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें। क्रॉप रोटेशन,
0: फसल चक्र अपनाते
1: हैं बिल्कुल। एक काला सड़न रोग जिसको हम ब्लैक रॉट कहते हैं, फफूंदी जनित रोग है और ये भूमिगत जड़ों में आता है, तो इसे जरूरी है कि बीज का चुनाव स्वस्थ फसल से लें और भूमि में जल निकास की व्यवस्था आवश्यक होने चाहिए, नहीं तो और ज्यादा फैलता है। और बाविस्टिन नामक दवाई से इसका छिड़काव करें, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में छिड़काव करें।
0: हमारे कुछ किसान बहन भाइयों ने शिकायत की थी कि उकता रोग भी इसमें लगता है।
1: जी जी, तो ये फफूंदजन्य रोग है, ये पौधशाला में बहुत ज्यादा लग, बेलों में नई पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, एक कर सूख जाता है, कंद का स्वाद भी इसमें खराब हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए लताओं को रोग रहित रखना चाहिए और नत्रजन की संतुलित मात्रा उपयोग करें, अधिक मात्रा देने से ये रोग बढ़ता है।
0: अंत में चलते चलते हमारे किसान बहन भाई के लिए आप बताएं कि खुदाई का तरीका इसका क्या होगा शकरकंद का, और फिर उसके बाद उसको सुरक्षित भंडारण हम कैसे कर पाए।
1: कंद पक जाते हैं कि खुदाई करना चाहिए, ये हल्के द्वारा या फावड़ा के द्वारा करना चाहिए। जून जुलाई में लगाएं तो आपका अक्टूबर नवंबर में उस फसल आपकी कट जाती है। जब इसकी पत्तियां पीली हो जाएं और सूखने लगे, जो कंद है उसको अपन काट लें बीचों बीच, और उसमें यदि सूख जाता है तो ये माने कि हमारा कंद मैच्योर हो चुका है। यदि हाँ, यदि उसमें हरा रंग रहता है तो ये माने कि हमारा कंद अभी मैच्योर नहीं हुआ। जो सूख रहा पत्तियां किसी कीड़े बीमारी के कारण या न्यूट्रिएंट्स के कारण हो सकता है। कुदाली से फावड़ा से खोदते हैं तो कट जाते हैं, उनको अलग करना चाहिए और इसको 10-15 दिन 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर खुले उसमें रखना चाहिए, और सुखाने के बाद कंदों को लकड़ी के बक्सों में रखना चाहिए और उसको बक्सों में हवादार होना चाहिए, और कंदों की एक परत बालू की रेत हो तो बहुत अच्छा होता है।
0: जी जी, तो डॉक्टर जगदीश सिंह साहब, आपने हमारे किसान बहन भाइयों को उनकी नकदी फसल शकरकंद के बारे में जानकारी दी है। आशा है कि इससे वो अधिक से अधिक लाभ लेके खेती को लाभ का धंधा बना सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अबे मने सुनत रहन भेंट वार्ता, जौने के विषय रहा शकरकंद की खेती। यह विषय में जनवही देत रहे डॉक्टर जगदीश सिंह, आओ अपना से बत कहो चलाए रहे विपिन भाई।
3: समय पर बुआ

0: भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ। समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: भैया बहनी है, देखिए अपने देश की सरकार, देश की जनता के खातिर और खास तौर पर पिछड़े और गरीब लोगों के खातिर और उनकी आजीविका के खातिर समय समय पर नई नई योजनाओं का लागू करके उनका सुविधा देत रहा थी, जौने वो लोग अपन जीवन निकाह के बिता सकें। उनके जीवन यापन में कौनो मेर के कठिनाई न आवे पावे। भाई करो, उन्हीं योजनन में एक ठे योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जौने का अब मनाई दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से जानत है। तैया भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित एक ठे प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजना आए। जून 2011 में शुरू की गए यह योजना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबन माने के गामन में रहे वाले गरीबन, विशेषकर महिलन का स्वयं सहायता समूहन में संगठित करके उनका स्थायी आजीविका और वित्तीय सहायता प्रदान करवाए है।

कुल मिलाई के या कही के या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना आए, यह योजना स्वरोजगार का बढ़ावा दे और ग्रामीण गरीबन के संगठन पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम के उद्देश्य गरीबन का स्वयं सहायता समूहन में संगठित करब और उनका स्वरोजगार के खातिर सक्षम बनाऊ बाय है। 1999 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के पुनर्गठन के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण गरीबन के बीच स्वरोजगार का बढ़ावा दे पर ध्यान केंद्रित करे के खातिर स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना शुरू की नहीं। यह स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का अब NRLM माने के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित की गया है, जो ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के कमियन का दूर कीन जा सके। यह कार्यक्रम 2011 में 5.1 अरब डॉलर के बजट के साथ शुरू कीन गया रहा। आओ ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमन में से एक रहा। यह गरीबन के आजीविका में सुधार ले आवे के खातिर विश्व के सबसे प्रमुख पहलन में से एक है। यह कार्यक्रम का विश्व बैंक के द्वारा 1 अरब डॉलर के ऋण के साथ समर्थन मिला है। भई करो यह कार्यक्रम के स्थान 25 सितंबर 2015 का लेनगा आओ एकर नाम बदल के दीनदयाल अंत्योदय योजना कई दिन का जैसन के पहले बताएं। यह योजना के पीछे मूल विचार स्वयं सहायता समूह बनाओ आ वो नहीं कुछ उद्यमशीलता गतिविधियन का शुरू करे में मदद करब रहा।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश

इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

अबे मनई सुनत रहन अजूरी जो ने का गावत रही जो तीती बारी। भई करो देखी अब होत लागी चले के अर्जुना, तो चले से पहले हम अपन पंचन का आज के उखान के रेगवीर की और सुधि लगवा दी थे। तो आज के उखान है धोई नहवाई गाड़र चहला में परी गए। तो भई करो हले ले यह आज के उखान, तो आव अपना पंचे कर मतलब बताऊ। एक एक खातिर देखी अपना पंचन का चाही पता, तब तो अपना पंचे भेज पाऊ। तो चली हम अपना पंचन का कार्यक्रम के पता बताए दे थे, तो पता अपना पंचे लिख ले। कार्यक्रम के पता है चौपाल के चिट्ठी द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी सिविल लाइन रीवा जिला रीवा मध्य प्रदेश। पिन कोड है 486001। तो भई कराओ अब एहिन पता पर हम ही पंचन कर ही अपना पंचन के चिट्ठिन केर इंतजार। आओ अब हो गए है चले केर जूना, तो दे विदा। चौपाल सुने वाले सवे भैया बहनी हरिन का हमार सुबेंद्र भाई केर राम राम, जय जवान जय किसान।

0: रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
1: भारत को कल 3 नए नौसैनिक जहाज मिले। इनमें स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी, सर्वे वेसल संशोधक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अग्रय शामिल हैं। इन जहाजों को

0: कल कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को समर्पित किया। इन जहाजों और भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक कॉमोडोर केडी जोशी। कॉमोडोर जोशी, आकाशवाणी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: कॉमोडोर जोशी, अलग अलग जहाजों की विशेषताओं पर बात करने से पहले मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि इन जहाजों का भारतीय नौसेना में शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। इनके निर्माण में भारतीय उद्योग जगत के साथ साथ 200 से अधिक एमएसएमई की भी व्यापक भागीदारी रही है, तो आपके विचार में ये कितना महत्वपूर्ण है?
1: देखिए, ऐसा है कि आज के वातावरण में जो दुनिया में चल रहा है, वह ये बहुत जरूरी है कि भारत को अपने पैरों पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है। उस दिशा में जो सरकार ने काम किए हैं इस बारे में और जो अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी ऊपर जा रही है उसके कारण, चाहे वो शिप बिल्डिंग में हो, चाहे शिप निर्माण में जो अलग अलग इक्विपमेंट काम में आते हैं, बनाए जाते हैं, वो आजकल भारत में बन रहे हैं। इसका उदाहरण ये तीन जहाज हैं जिनमें करीब 75-80% इक्विपमेंट जो है वो भारत में बना हुआ है। जैसा कि आपने बताया, करीब करीब 200 एमएसएमई लघु उद्योग इसमें इन तीनों जहाजों में इनके साथ जुड़े हुए थे, ताकि उन्होंने जो इक्विपमेंट बनाए, उन्होंने जो सिस्टम्स बनाए, उन्होंने जो आइटम्स बनाए, वो इन जहाजों में लगे हुए हैं। और ये मैं कह सकता हूं कि भारत के लिए ये बहुत स्वर्णिम मौका है कि पूरे इस दिशा में अच्छी प्रगति करें, और जितना ये गैप रह गया पूरी तरह इंडिजिनस होने में, जो आप कह सकते हैं कि जो वेपन्स और सेंसर्स हैं उसमें ये थोड़ा गैप ज्यादा दिखता है, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं शिप बिल्डिंग के, जिसमें शिप की जो बॉडी है जिसको हल बोलते हैं वो, और शिप के मशीनरी जो अंदर लगी हुई है, वो प्राइमरीली हमारे पास अच्छी कैपेबिलिटी है उनका भारत में ही निर्माण करने की और भारत में ही उसको अपने जहाजों पे लगाने की। अगर आप देखिए, भारत में जहाज निर्माण का जो कार्य है वो अभी यहीं पे हो रहा है। कुछ दशक पहले हम लोग जहाज बाहर से मंगवाते थे, आज जहाज घर में बन रहे हैं। और जिसके कारण, अगर आप दोबारा से इसी तीन जहाजों का उदाहरण लेंगे, तो 200 एमएसएमई जैसा आपने बताया, करीब करीब 4,000-4,500 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, 10,000 के करीब लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे जिनमें कह सकते हैं कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिली है।
0: जी कॉमोडोर जोशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि किसी देश की समुद्री शक्ति जितनी मजबूत होती है उसका आर्थिक और सामरिक प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के ही शब्द।
2: मैरिटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा।
0: कॉमोडोर जोशी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी और अब आपसे ये बात करना चाहूंगी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भारतीय नौसेना ने इसे एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत बताया है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि स्टेल्थ फ्रिगेट आखिर होता क्या है?
1: अभी आप देखें, इसके लिए जो स्टेल्थ शब्द है उसका मतलब जानना थोड़ा सा जरूरी है। स्टेल्थ का मतलब है छुपा हुआ, आंखों को एकदम ना दिखे, उस हिसाब से बोला जा सकता है। तो अगर आप देखिए, पुराने जो पहले जो जहाज बनते थे, आप उनको अपने से दूरबीनों से या अपनी आंखों से थोड़े डिस्टेंस तक देख सकते थे, बट आजकल जो जहाज बन रहे हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो आज की डेट में करीब 10 से 50 से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक किसी भी जहाज को, उसकी जो प्रेजेंस है कि जहाज मौजूद है कि नहीं 300 किलोमीटर दूर, उसको देखने की क्षमता रखते हैं। बट अगर जहाज की कंस्ट्रक्शन ऐसी हो उसका निर्माण ऐसा हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो रडार है जिसको हम बोलते हैं, जिससे एक जहाज दूसरे जहाज को देख सकेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, दूसरे जहाज की अगर कंस्ट्रक्शन एक अलग तरह से हो तो ये रडार जो है वो देख नहीं पाता है उसको। तो रडार जो एक इक्विपमेंट है, वो एक बीम फेंकता है, वो बीम वापिस आती है दूसरे जो टारगेट जहाज है उससे। लेकिन जो स्टेल्थ शिप है, वो टारगेट, वो जो बीम उसके ऊपर जाएगी, उस बीम को कहीं और डायरेक्ट कर देगा, ताकि वो जिसने बीम आपके पास भेजी है उस जहाज को वापिस ना मिले, उस जहाज को आपकी प्रेजेंस का, आपके वहां मौजूद होने का पता नहीं लगेगा। इस जो टेक्नोलॉजी है उसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और उसमें सिर्फ जहाज निर्माण नहीं, उसका जो पेंट लगाया जाता है उसका भी योगदान रहता है।
0: आपने काफी विस्तार से हमारे श्रोताओं को समझाया कि आखिर स्टेल्थ फ्रिगेट होता क्या है। आगे बढ़ते हैं कॉमोडोर जोशी, और कल यानी कि 21 जून को विश्व योग दिवस के साथ साथ विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है, और इसी दिन सर्वे वेसल लार्ज INS संशोधक को भी नौसेना में शामिल किया गया। इस जहाज की भूमिका क्या रहेगी और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?
1: इंडियन नेवी में जो सर्वे वेसल्स है उनका काम, जैसे कि नाम दर्शा रहा है, सर्वे करना है, मतलब उसको नीचे जो समुद्र के नीचे है उसको देखना है कि क्या चीजें मौजूद हैं, कुछ डेबरी है क्या, कुछ शिप्स का रैक है क्या, उसमें समुद्र का जो बॉटम है उसमें इवन नहीं होता है, जैसे सड़क ऊंच नीच होती है वैसे समुद्र का जो नीचे का हिस्सा रहता है जो पानी के नीचे, वो भी ऊंचा और नीचा रहता है। तो अगर कोई जहाज किसी ऐसी जगह से जा रहा है जहां उसको सफिशियंट डेप्थ नहीं है, जहां गहराई नहीं मिल रही है, तो जहाज के ग्राउंडिंग होने का खतरा रहता है। तो अब जहाज को कैसे पता चलेगा कि मुझे उस जगह पे नहीं जाना है? तो वो चार्ट में उनकी डेप्थ वगैरह लिखी जाती है, और वो डेप्थ कौन लिखता है, शिपरेक इंडिकेट कौन करता है, डेबरी है करके इंडिकेट कौन करता है, वो सर्वे वेसल्स जो है वो सर्वे करते हैं, और वो फाइनली इंफॉर्मेशन चार्ट पे दर्शा दी जाती है। और अगर कोई शिपरेक वगैरह है तो मरीनर्स को सबको बता भी दिया जाता है बुलेटिन्स के द्वारा कि इस एरिया में फला फला जगह पे एक शिपरेक है, आप इस जगह से ट्रांजिट मत कीजिए। तो इन जहाजों का जो काम है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, बट अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। संशोधक जो है, हमारे पास अभी करीब करीब चार सर्वे वेसल्स हैं, उसमें से संशोधक जो है वो लेटेस्ट परसों कमीशन हुआ है, और इसमें अंडर वाटर सोनार साइट स्कैन लगा हुआ है, जो साइट स्कैन सोनार है उससे जहाज की कैपेबिलिटी दाएं बाएं देखने की, नीचे देखने की, किसी एक टाइम पे ज्यादा अच्छे से बढ़ती है, और जो फिर वो एक पिक्चर बनती है उसके सामने कि एक समुद्र के जो नीचे सतह है वो कैसे दिख रही है, वो ज्यादा अच्छे से आती है सामने। तो इनकी जो सर्वे कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, प्रोसेसिंग इनकी ज्यादा बेहतर है, ये वाले जहाज ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, और उसके कारण पूरा मैरिटाइम सेक्टर, विच डजंट ओनली इंक्लूड भारतीय नौसेना के जहाज अपितु बाकी जो कमर्शियल ट्रेडिंग है उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है जो ये काम करते हैं अपने सर्वे वेसल्स।
0: आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बात करना चाहूंगी INS अग्रे की। ये अर्नाला श्रेणी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैली वॉटर क्राफ्ट है। इसकी खास विशेषताएं क्या हैं और ये भारतीय नौसेना की क्षमताओं को किस प्रकार मजबूत कर रहा है?
1: जी, जैसा कि नाम में आ रहा है, शैलो वॉटर क्राफ्ट, शैलो का मतलब है कि ज्यादा गहराई भी नहीं, उसका काम है कि वो जो कम गहराई वाले एरिया है उसमें ये एंटी सबमरीन ऑपरेशंस कर सकता है। एंटी सबमरीन का मतलब है कि जो समुद्र के नीचे से जहाज को अटैक होने के चांसेस हैं वो उनका पता लगा सकता है। तो काफी सारे जहाज हैं जो थोड़े डीप वाटर्स में जाके वो अपने ASW ऑपरेशन, दैट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये वाला जो जहाज है ये शैलो वाटर में भी कर सकता है। आजकल की डेट में एसिमेट्रिक वॉरफेयर काफी बढ़ गया है, हमको पता नहीं चलता है कि किस जगह से हमको एक वल्नरेबिलिटी है या थ्रेट आ सकता है, तो कई बार शैलो वाटर से भी थ्रेट होता है। तो ये जो जहाज है ये वहां पे पता कर सकता है कि वहां से कोई थ्रेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसके पास में इसके लिए एडवांस सोनार सिस्टम्स लगे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा थ्रेट है जो कन्फर्म भी हो जाता है, लाइट वेट टॉर्पिडोज लगे हुए हैं जिससे इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इन जहाजों के द्वारा।
0: कमांडर जोशी, आपसे सबसे पहले

0: मैं एक चीज समझना चाहूंगी यहाँ पे कि महासागर यानी कि ओशन और डीप सीज में क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, और ऐसे में जितना हम अपने मैरिटाइम डोमेन को स्ट्रांग करेंगे, तो आपको लगता है कि मैरिटाइम डोमेन को जितना हम सशक्त बनाएंगे उससे हमारी क्रिटिकल मिनरल्स की डिपेंडेंस बाकी के बाहर के देशों पर कम हो पाएगी?
1: जी, आपने बिल्कुल सही बोला ये। अगर जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो अपने जो हर एक कंट्री का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो उसके शोर तटीय लाइन से करीब 200 माइल्स तक समुन्दर के अंदर, वो ईईजेड बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके अंदर जो अगर नीचे कुछ मिनरल्स वगैरह पाए जाएंगे तो वो देश के समझे जाते हैं, उसके बियॉन्ड जो है वो इंटरनेशनल एरिया माना जाता है। तो अगर हमारा जो माइनिंग कैपेबिलिटी है वो अगर सशक्त बनाई जाए, डीप अंडर वाटर माइनिंग कैपेबिलिटी, तो समुन्दर की सतह के नीचे ये अंदाजा है कि बहुत ज्यादा जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन के लिए, चाहे अपने डे टू डे इवन मेडिकल अगर आप देखे जाएं, या फिर किसी और भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में काफी सारे मिनरल्स हैं जो देश में अपनी जमीन पे नहीं है लेकिन हो सकता है वो सागर के अंदर मौजूद हो और जो हमें जरूरत है। तो हमारा सबसे पहले बनता है कि वो ये जो एरिया है हमारा वो थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रहे, उसमें ज्यादा अपने को वल्नरेबिलिटीज ना रहे, अपने को उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस ना रहे बाकी लोगों से, क्योंकि ये जो है ये ऑल दो ईईजेड बोल सकते हैं बट नेविगेशन फ्रीडम सभी कंट्रीज को, सभी जहाजों को वहां से है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाज रुक जाएंगे, आना जाना रोक दिया जाएगा, तो जहाज आते जाते रहेंगे दूसरी कंट्रीज के। लेकिन हमारा इतना ये होना चाहिए कि हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं नीचे तो वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं, वो कोई और उस पे हक नहीं जमा पाएगा। तो ये अपना एरिया बनता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम बनाया गया है, चाहे वो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर बनाया हो, चाहे वो शिपिंग सेक्टर को 70,000 करोड़ रुपए देके बनाया गया हो, ये सारा का सारा इसको इसका जो एक अफेक्ट बोलते हैं, विच इज एक डोमिनो अफेक्ट बनेगा इसका, उसमें बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो सरकार का इस टाइम जो एक फोकस एरिया लग रहा है, एक ऐसा एक अंदाजा है कि भारत को एक समुद्री शक्ति बनाया जाए।
0: जी कॉमोडोर जोशी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें इस पूरे विषय के बारे में हमें समझाया। आपने हमें ये भी बताया कि क्या महत्व है उन तीनों शिप्स का जो कल कमीशन हुई है प्रधानमंत्री द्वारा। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय आकाशवाणी को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत की समुद्री सैन्य क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम ग्रंथ फिल्म का गीत विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जयदेव के संगीत से सजाओ गीत, बोल है जानिसाद अख्तर के और फिल्म का नाम प्रेम पर्वत, आवाज लता मंगेशकर की है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत इंदिवर का लिखा हुआ, धुन बनाई है बप्पी लहरी ने, आवाजें हैं बप्पी लहरी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम प्रेम प्रतिज्ञा।

हीरा पन्ना, आइए सुनते इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के पोल हैं और संगीत आरडी परमन का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की।

0: आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।

मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक हरिदासपुर पारादीप खुर्दा रोड बलंगीर नौपाड़ा गुनुपुर लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

0: मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
2: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newson

0: aiar.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते, तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

उन्होंने भारतीय संतों की सताइश की कि उन्होंने शहरियों के माबेन कौमियत के जज्बात को बेदार किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल की वजारत दिफा में डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल अमीर बारम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजारत दिफा ने बताया कि जनाब बारम ने जनाब सिंह को भारत इसराइल खसूसी कलीदी शराकत दारी के मजमूई दायरा कार के तहत भारत इसराइल दिफाई तआवुन को वसत देने के तहत इसराइल के अज़्म से वाकिफ कराया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने उलान बाटा में आज मंगोलिया के अपने हम मनसब बदसित्सक बदमुख से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस तबादले ख्याल से भारत और मंगोलिया के दरमियान कलीदी साझेदारी की गर्मजोशी कुव्वत और मुस्तकबिल की अक्कासी होती है। दोनों रहनुमाओं ने तरक्याती प्रोजेक्टों, सलाहियत साजी, सकाफत, तालीम, सिक्योरिटी और कसीर मुल्की फोरमों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान तरफेन ने कानकनी माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और जरई प्रोसेसिंग के शोबों में दस्तियाब मौकों के बारे में भी बातचीत की। बीजेपी की क्यादत वाली मगरबी बंगाल सरकार ने आज 2026-27 के लिए अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में समाजी फलाह बहबूद, बुनियादी ढांचे की तरक्की और रोजगार पैदा करने पर खास जोर दिया गया है। बजट में ख्वातीन पर मरकूज कई इकदामात का ऐलान भी किया गया। 6,070 करोड़ रुपए के खसारे वाला बजट पेश करते हुए वजीर खजाना स्वपन दास गुप्ता ने इसे एक तरक्की याफ्ता बंगाल बनाने के लिए एक रोड मैप करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत का बकाया कर्ज 8,00,000 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया है। इसमें माली नज्म व जब्त को अव्वलीन तरजीह दी गई है। भारतीय रेलवे ने मुसाफिरों की हिफाजत और रेलवे के कामकाज की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की खातिर मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर रूट पर ट्रेन की हिफाजत के खुदकार निजाम कवच को नस्ब करने की मंजूरी दी है। रेलवे की वजारत के मुताबिक ये प्रोजेक्ट मशरकी साहिली रेलवे के 6 अहम रेलवे सेक्शन पर मुश्तमिल है, जिनमें बगवापाल बुद्धापंख, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बालंगीर, गुन्नूपुर नौपाड़ा, लांजीगढ़ जूनागढ़ और बबीली सलूर शामिल हैं। इन रास्तों पर कवच निजाम की तंसीब से रेलवे के कामकाज के हिफाजती मेयार में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि ये खुदकार निजाम ट्रेन की हिफाजत और ट्रेनों की टक्कर से बचाव के लिए जदीद सलाहियतें फराहम करता है। वजारत ने मजीद कहा कि इस प्रोजेक्ट से उड़ीसा और मशरकी साहिली रेलवे के जेर इंतजाम इलाकों में मुसाफिर ट्रेनों और मालगाड़ियों दोनों किस्म की ट्रेन खिदमात को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे के उस जारी मिशन को भी तकवीत देगा, जिसका मकसद ज्यादा मसरूफ और कलीदी अहमियत के हामिल रेलवे रास्ते पर कवच निजाम की कवरेज की तौसी करना है। ये आकाशवाणी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टर्मर ने अपने ओहदे से और लेबर पार्टी के लीडर के तौर पर भी इस्तीफा दे दिया है। इस तरह खुद अपनी ही पार्टी के बढ़ते हुए दबाव के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट पर उनकी मुद्दतकार का इख्तिताम हो गया। अपने इस्तीफे के मुतालिक बयान देते हुए जनाब स्टर्मर ने 2 साल कबल डाउनिंग स्ट्रीट पर अपनी आमद को अपनी जिंदगी का फख्र से भरपूर एक लम्हा करार दिया और कहा कि उन्होंने सियासत में लाखों अफराद की जिंदगी को तब्दील करने के मकसद से कदम रखा था। इधर सीनियर सियासतदान एंडी बर्नहम ने केर स्टर्मर की जगह लेबर पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब होने की अपनी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। डाउनिंग स्ट्रीट के अगले ओहदेदार के तायुन के लिए दौड़ अगले माह शुरू होगी। लेबर पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 9 जुलाई से नामजदगियां कबूल करना शुरू करने का ऐलान किया है। दोहा में भारतीय सिफारतखाने ने कल रैस लेफन सनती शहर में पेश आए अफसोसनाक वाकये पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। हुक्काम के मुताबिक इस वाकये में कई लोग जख्मी हो गए और कुछ अफराद लापता हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सिफारतखाने ने कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में कतर की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। किसी भी तरह की मदद और पूछताछ के लिए सिफारतखाने से हेल्पलाइन नंबर +97455564752 या +97455384683 और ईमेल cons.doha@mea.gov.in पर राब्ता किया जा सकता है। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों की 2 रोजा मीटिंग आज नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। इसमें ब्रिक्स के 11 मेंबर मुल्कों के सिक्योरिटी सरबराहान शिरकत कर रहे हैं।

0: भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। मीटिंग के दौरान होने वाली बातचीत में कौमी सिक्योरिटी चैलेंजों की तेजी के साथ बदलती हुई नौइयत के अलावा उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात के ताल्लुक से नई टेक्नोलॉजियों के रोल पर भी गौर खौज किया जा रहा है। इस मीटिंग के मौके पर कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सेक्रेटरी गदीर निजामी पूर से मुलाकात की। तरफेन ने मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया और ब्रिक्स प्लेटफॉर्म के तहत तआवुन और भारत ईरान दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। निशानेबाजी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत ने मजीद चार तमगे जीतकर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है और वो तमगे के लिहाज से सरफहरिस्त है। नौ उम्र निशानेबाज प्रीतम केंद्रे ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल जूनियर मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया। इस तरह उन्होंने चैंपियनशिप में भारत के लिए पांचवा सोने का तमगा जीता। ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल टीम मुकाबले में अंजलि महेंद्र भागवत, परीक्षा गुप्ता और निथिला आईवी डार्लिंग प्रवीण क्रिस्टोफर पर मुश्तमिल टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। भारत ने मर्दों के 25 मीटर पिस्टल जूनियर टीम मुकाबले में भी कांसे का तमगा हासिल किया। अभिनव चौधरी, राजचंद्र और जतिन पर मुश्तमिल टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कांसे का तमगा जीता। इससे पहले अनवी राठौर ने ख्वातीन के 10 मीटर एयर राइफल जूनियर मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। इस तरह भारत के तमगों की मजमूई तादाद अब 12 हो गई है। इसमें सोने के 5, चांदी का 1 और कांसे के 6 तमगे शामिल हैं। फीफा आलमी कप 2026 में आज रात ग्रुप जे के एक मैच में अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय मेयारी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। मैच अमेरिका के अर्लिंगटन में होगा। रात देर गए 2:30 बजे फिलाडेल्फिया में फ्रांस का मुकाबला इराक से होगा। इससे कबल आज सुबह मिस्र ने न्यूजीलैंड को 1-3 गोल से हराकर पहली मर्तबा आलमी कप का कोई मैच जीता और इस तरह उसे ग्रुप जी में पहला मकाम हासिल हो गया। आखिर में ब्रिटेन की खास खास खबरें एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिले भरोसा मईशत है और हमारा मुल्क एक काबिले भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। शिवसेना UBT के 6 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट ने एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर तवील रास्ते पर ऑटोमेटिक रेलगाड़ी तहफुजाती निजाम कवच शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टेमन ने लेबर पार्टी में जारी टूट फूट के दौरान इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इसे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331 0481 या 2371 7117

0: दो तीन सात एक सात एक शून्य छः और 2-3-3-1-4-4-4-4 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289-0940-44। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहां पे कुछ 6 महीने के लिए 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणित जी आपसे जानना चाहूंगी कि ईपीएफओ बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: हाँ, तो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ को सौंपा है। तो ईपीएफओ इंडिया एंड वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज है लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो ईपीएफओ के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली ईपीएफओ एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
0: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है ईपीएफओ नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, सवाल पूछिए अपना।
3: हाँ, विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला।
2: हाँ रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
0: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है ये बताएं।
1: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहां रह जाता है तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम वो 15,000 रुपए, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपए तक मिलता है और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वही एम्प्लॉयड रह गए तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रुपए तक की राशि दी जाती है।
0: तो 6 महीने के बाद और फिर
1: 6 महीने दो बार दिया जाता
0: है। आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से है राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
4: जी, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
1: तो राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ता है। ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए जो ईपीएफओ में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंपनी जहां पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहां आप काम कर रहे हैं वो अगर ईपीएफ में कवर्ड है, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे ईपीएफओ से जुड़े हुए नहीं थे तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई

0: की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ईपीएफ में आप किसी भी इम्प्लॉई का कंप्लायंस हो रहा है तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
1: जी, अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, खासकर जैसे अगर कोई कंपनी है अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है या स्टार्टअप है नया, तो उन सबके लिए क्या प्रावधान है?
0: कंपनी के लिए दो तीन चीजें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है तो पहला तो उनका कवरेज जरूरत होगी यहाँ ईपीएफओ में। साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपए तक की सैलरी है एम्प्लॉई की तो उसमें 1,000 रुपए, अगर 20,000 रुपए तक की सैलरी है 10 से 20,000 तो 2,000 रुपए, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपए तक की अगर सैलरी है तो 3,000 रुपए का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है। और ये एम्प्लॉयर को प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा, अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने हुआ, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा
1: डीबीटी के थ्रू ही।
0: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है।
1: हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी, थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी। सर मैं जानना चाहता हूँ, सर ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकता है, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन, क्या
1: पात्रता क्या होनी चाहिए?
3: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताया कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपकी संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं, और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1,00,000 से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
1: जब एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज हैं या 50 से ज्यादा हैं, तो उन सबके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आप आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
0: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशन में से एक है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है। तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई है, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज बता दूं आपको कि जहां पे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ईसीआर पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, 2 आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए। तो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी ईपीएफओ को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कॉम्पोनेंट है हमारा, कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है, जो जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया बेसलाइन जिसे हम कहते हैं, तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है। अगर अगस्त 2000

0: अगर 25 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
1: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो सेट है उसकी आवाज कम कर दें।
2: मैडम कर दिया माना
1: जी जी
2: कर दिया कर दिया। मैडम मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ एनआईसी मुजफ्फरपुर में, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के ये मेरा जो है ईपीएफ नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग लेकिन पहले से जो हम कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो ईपीएफ कटा हुआ है तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है?
0: हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉय होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से ईपीएफ से जुड़े हुए हैं तो जो एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
1: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी।
3: जी मैम नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र।
1: जी जी।
3: हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है जैसे ईपीएफओ में जो नई कंपनियां होती है जैसे ज्वाइंट होते हैं लेकिन एम्प्लॉय का पैसा तो कटता है, कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वहाँ पे जमा नहीं हो पाया है, कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है इसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का जिस कंपनी से तो वो जमा हुआ है कि नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू।
1: ठीक है,
4: गुरुनाथ जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉय से जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है पीएफ जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर पीएफ जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका जो पासबुक है आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है, एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है, तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
1: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
5: जी नमस्कार, मेरा ये सवाल था सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कभी छूट जाता है तो कैसे मालूम चलेगा कि उनका पीएफ जो कटता है या पीएफ का जो इतना संभाग उनमें रहता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है कहाँ कैसे?
0: अमित जी, अमित जी नमस्कार। आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहाँ कहीं भी काम किया होगा तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके ईपीएफओ के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फोन नंबर है उसके थ्रू ओटीपी से आप रिसेट कर सकते हैं, और जितने जगह पे भी आपने काम किया होगा जो यूएएन से लिंक्ड होगा वहां पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही, आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए, और जहां जहां से भी आपने काम किया है अगर आपने ट्रांसफर नहीं करवाया है तो आप उसको एक जगह पे ट्रांसफर करवा लें ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी।
1: जी हाँ, जैसे अब कई लोगों की शंकाएं हैं, कई जो होते हैं जो कर्मचारी हैं उनको ईपीएफ खाते यूएएन नंबर जो अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं?
4: जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहां पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय तो एम्प्लॉयर खुद उनका यूएएन जनरेट करते थे, तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना यूएन जनरेट करेंगे।

0: और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे, तो उससे जो उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका ईपीएफओ का अकाउंट बना नहीं है, बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है। तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है।
1: ठीक, उड़ीसा से जुड़े हैं देशदीप दासी। दासी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दासी, आपको हमारी आवाज मिल रही है
2: जी? नमस्ते।
1: नमस्ते
2: शर्मा जी और अरोरा जी, नमस्ते
1: जी।
0: नमस्ते
2: जी। मेरा सवाल है, क्या नियोक्ता को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
3: नियोक्ता को अलग से मैं नहीं कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पोर्टल पे जाकर और आपको केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है, उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है। उसके बाद नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है, बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक बैंक अकाउंट में देते हैं। तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं वहां पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है, उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती।
1: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
3: और कोई दस्तावेज नहीं चाहिए,
1: जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए। ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोजगार सृजन के हिसाब से बात करें तो बहुत बड़ी 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है। मेजर अगर बात करें जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना, तो उनके लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
3: इसमें दो तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला, जो इम्प्लॉयज पहली बात की 6 महीने तक वो रहेंगे एक जगह, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहां रुकें। एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉई वहीं पर रह जाए। एम्प्लॉई को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉई अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ एक ऐसी स्कीम है जहां पे एम्प्लॉयर को भी फायदा हो रहा है, एम्प्लॉई को भी फायदा हो रहा है। जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉई के अगेंस्ट है, एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है। यहाँ इन दोनों को साथ में लेकर चलने की बात हो रही है।
1: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
3: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहाँ उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे और सस्टेन करें वहाँ 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा
1: जी। दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
4: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार।
3: नमस्कार
4: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी उसको डिसाइड कर सकता है?
0: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है। तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
1: सैलरी का पूछा है।
0: सैलरी, हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए। तो 1 लाख से जो नीचे उनका जिसका ग्रॉस सैलरी है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
1: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
0: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा ईपीएफओ हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये पीएम

0: इसमें नॉट पेइंग इन उनका सुपर एनुएशन पेंशन, बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है एंड इंश्योरेंस का भी एक कॉम्पोनेंट है लाइफ इंश्योरेंस का।
1: जी पुनीन्द्र जी, जैसे अक्सर शायद किसी न किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये रोज योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
2: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेस लाइन से या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है तो एम्प्लॉई तो चलो छह महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहां एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी अब बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं हटा रहे हैं अगर वहां पर रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो राधर एम्प्लॉयर को अभी ज्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉई के लिए भी फायदा एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
1: जी विन विन सिचुएशन है दोनों।
2: विन विन जी।
1: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार।
3: मैं बसपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर। सर मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर नए स्तर से। दूसरा है सर
2: ये पूछा
1: जी मोहन जी,
3: जो सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर।
1: जनरलाइज सवाल पूछाना
2: है। जनरलाइज सवाल है, बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई है भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना यह प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए इंसेंटिवाइज करने के लिए एक बहुत अच्छी योजना है।
1: जी अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में एमएसएमई क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोजगार सृजित करते हैं, तो देश जो एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को एमएसएमई क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से?
0: तो इसमें एमएसएमई के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली ईपीएफओ जो लॉ है वो केवल एस्टेब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है, बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसमें बहुत सारे ऐसे एमएसएमई हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है क्योंकि उनके लिए उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको केवल दो एम्प्लॉयज एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है। तो दो साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट दो नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है, तो सारे एमएसएमएस इसमें बहुत बेनिफिट मिलने की आवश्यकता है।
1: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
0: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर्स जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें, तो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो दो साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको चार साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
1: यदि कोई जो युवा है पुनीन्द्र जी पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे ईपीएफओ से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
2: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो यूएएन जनरेट होता है तो वहां पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना डीबीटी के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है। तो ये दोनों चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे फिर जैसे ही ईपीएफओ में अगर आप जुड़ते हैं ऑटोमेटिकली आप छह महीने तक अगर

0: रहे हैं, यहां हमारे साथ सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहां आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में चले जाते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
2: जिला छत्तीसगढ़ से इंद्र भान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है, भारत रोजगार में कौन कौन से सेक्टर है,
1: कौन कौन से
0: इसमें
1: सेक्टर?
0: इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम ईपीएफओ के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन यूएएन के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है, तो जितने भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू सारा कुछ ये सारी बेनिफिट जाती है।
1: जी, अगर किसी के मन में प्रश्न है कि कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
3: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा, pmvbrv.labor.gov.in। इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80। इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
1: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
0: मैम, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं और ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है।
1: जी,
0: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफी ज्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
1: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणित जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में मैं अनुराधा अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गीत, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में। फैज अनवर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं औरंगाबाद से राजेश सावले, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य मानस और मन पटेल। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये प्यारा सा गीत।

भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मनी रावत, शुभ

हम सौरभ रावत और जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड बानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, ये सभी श्रोता सुनने के ख्वाहिशमंद है हिना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत और संगीत रविन्द्र जैन का है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आइए सुनते हैं नीरज का लिखा हुआ गीत, तर्ज बनाई है एसजी परमन ने, फिल्म का नाम है गैम्बलर।

ले हमारे श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर।

मैंने प्यार किया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज में। देव कोहली का गीत है और संगीत राम लक्ष्मण का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कहानकर, श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत प्रमिता और आकर हाइस बहादुरपुर नागपुर से वैशाली शैलेश, श्वेता सुमित और कुमारी धोनी।

एक और पत्र हमारे हाथ में है, छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेगी से। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा का। तो ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का गीत, तो सुनते हैं इस गीत को।

नेपाल पैलेस सागर से हमें पत्र लिखा है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। और एक और पत्र हमारे हाथ में है कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति शिवानी शिमाली। और ग्राम पजौनिया जिला जालौन से हमें पत्र मिला है सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं जाने दुश्मन फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। वर्मा मलिक का गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत पैरेलाल का। तो आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन, राग था यमन। तबले पर संगत की थी ठाकुर उदय प्रताप सिंह ने और हारमोनियम पर थे सलीम अल्लाह वाले। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके

0: रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
3: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
2: द प्राइम मिनिस्टर सेड द कंट्री हैज विटनेस्ड एंड एंड्योर्ड साइकल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन। ही एडेड दैट इंडिया कैरीज द मेमोरी चिप ऑफ एजेस विद इन इट्स कॉन्शियसनेस। Mr. Modi stated that India's actions are shaping the future for the next 1,000 years. Highlighting the achievements of the NDA government over the past 12 years, Mr. Modi said, mobile connectivity has been extended to approximately 45,000 villages across the country. He also mentioned that around 75,000 banking correspondents and over 6,000 post offices were established. Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde today announced the induction of 6 Lok Sabha MPs from the Shiv Sena UBT faction into the party. Addressing a press conference in Mumbai, Mr. Shinde welcomed the MPs Sanjay Dina Patil, Sanjay Deshmukh, Sanjay Jadhav, Bhau Saheb Bakachore, Nagesh Patil Ashtikar and Om Prakash Rajanimbalkar into Shiv Sena. Mr. Shinde said, the induction of the six MPs marked the second phase of the movement that began in June 2022 when 40 Shiv Sena MLAs rebelled. He said the uprising was aimed at preserving the ideology of Shiv Sena founder Balasaheb Thackeray and safeguarding the party's Hindutva principles. Indian Railways has approved the deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometers of East Coast Railway to enhance safety and operational efficiency. The Railway Ministry said the project covers six important railway sections of East Coast Railway, including Bhaguapal Budpank, Hardaspur to Paradeep, Khurda Road Balangir, Nopara Gunapur, Lanjigarh Road to Junagarh, and Bobli Salur. The Hajj Committee of India has started inviting applications from prospective pilgrims for Hajj 2027. Releasing the policy, Minority Affairs Minister Kiran Rijiju today said, applications can be submitted online through the Hajj Committee of India portal and the Hajj Suvidha app, making the process more flexible, simple and accessible. India has recorded more than 5 lakh organ donation pledges, reflecting the growing awareness, compassion and collective commitment of citizens towards the life-saving cause of organ and tissue donation. The Ministry of Health and Family Welfare said, this achievement underscores the increasing public recognition of organ donation as a profound act of humanity that offers hope and a second chance at life to patients awaiting transplantation. In shooting, India added 4 more medals at the ISSF Junior World Championship, including a gold medal by teenager Pritam Kendre at Zue in Germany to strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising